90.8 FM झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन। कुछ ऐसे पल होते हैं जब आत्मा मनुष्यों के बीच विचरती है और ईश्वर का प्रवास यानी कि बाहर निकलने की सांसें हमारे अस्तित्व की जलराशि पर चारों ओर विद्यमान रहता है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब वो अलग हट जाता है और मनुष्य अपने व्यक्तिगत अहम की सबलता और निर्बलता पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पहले वाली स्थिति यह है कि जब थोड़ा सा भी कोशिश करें तो बड़े बड़े परिणाम आ जाते हैं और भाग्य को बदल डालते हैं। दूसरे वो काल स्थल है जब बहुत काम करने पर भी छोटा सा ही रिजल्ट निकलता है। यह सच है कि बाद वाला पहले वाले को तैयार कर सकता है। शायद ये यज्ञ का थोड़ा सा धुआं जो ईश्वर की उदारता को वर्षों से बुलाकर नीचे ला रहा है वही काम आता है दोस्तों। वो व्यक्ति या राष्ट्र परेशान ही रहता है जो जब दैवी क्षण आए तब सोता रहे और उसका उपयोग ना करे, इसलिए कि दीपक को स्वागत के लिए दुरुस्त नहीं रखा गया और पुकार के लिए कान बंद हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए तीन बार लानत है जो बलवान और तैयार होते हुए भी शक्ति को यूं ही गंवा देते हैं और उस पल का गलत उपयोग कर देते हैं। उनके लिए ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता या एक महाविनाश हो सकता है।

ऊपर वाले की घड़ी में तुम अपनी आत्मा को ढंग से लगाओ। मिथ्याचार बंद करो, अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं। सच्चाई दोस्तों यही है। आप कर सकते हैं अहंकार कि मेरे पास दुनिया की तमाम सुविधाएं हैं, काफी सारा धन है, ठीक है किसी को मत बताइए, लेकिन मन ही मन अपने को तो पता ही होता है ना। सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, लेकिन मानने में पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। स्वभाव का सारा कपट जो कभी ऊपर वाले के नेत्रों और आदर्श के प्रकाश के विपरीत आपका बचाव था, अब वही कवच अंतराल में बदल गया है और आघात को आमंत्रित कर रहा है। यदि तुम उस क्षण जीत भी जाओ तो भी तुम्हारे लिए ये बुरा ही होगा, क्योंकि आघात बाद में आएगा और जीत के बीच में तुम्हें नीचे पटक दिया जाएगा। लेकिन शुद्ध होकर तुम सारा भय अलग कर सकते हो, क्योंकि वो घड़ी प्रायः भयंकर ही होती है, पर जो उसके उद्देश्य की सत्यता पर खड़ा रहेगा वही उस पर टिक पाएगा। यदि वो गिर भी गया तो फिर से उठ जाएगा। यदि ऐसा भी लगे कि वो हवा के पंखों पर उड़ रहा है, तब भी लौट तो आएगा ही। तुम अपने कान में सांसारिक विवेक को बहुत पास से फुसफुसाने ही मत दो, क्योंकि ये घड़ी अप्रत्याशित है। उस सांस की शक्ति को तुम अपने तुच्छ उपकरणों से मत मापो, बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। सबसे ऊपर तुम अपनी आत्मा को चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही अहंकार से अलग रखो, तब तुम्हारे पास आगे एक आग चलेगी और तूफान मददगार होगा, और महानता के जिस ऊंचे से ऊंचे शिखर को जीता जाना चाहिए उस पर आपका झंडा फहराएगा।

एक बार एक राजा ने इतना ज्यादा सुरक्षित महल बनवाया कि उसमें किसी भी दुश्मन के घुस सकने की कोई आशंका ही ना रहे। उस राजा ने पूरी दुनिया को जीतना चाहा था, तो जाहिर सी बात है उसके बड़े सारे दुश्मन भी थे। अब क्योंकि पूरी दुनिया में दुश्मन हो गए थे तो स्वाभाविक है भय डर भी बढ़ गया था। डर बढ़ा तो सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसने ये मजबूत जबरदस्त अभेद्य महल बनवाया। इस महल में एक ही दरवाजा था, खिड़कियां भी नहीं थी, कहीं कोई हवा भी न घुस जाए, कहीं कोई जगह न रह जाए जिससे कोई भी दुश्मन कभी भीतर आने की सोच भी सके। इस बड़े सारे महल में एक ही दरवाजा था और इस दरवाजे पर हजारों नंगी तलवारों का पहरा भी लगा दिया गया। अब पड़ोस के राजा उस बहुत ही सुरक्षित महल को देखने आए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह, बहुत आनंदित हुआ, मैं भी ऐसा ही महल बहुत जल्द बनवाता हूं। यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें तो कोई खतरा लगता ही नहीं। जब पड़ोस का राजा विदा ले रहा था तो मेजबान राजा से उसने कहा, आपने सचमुच बड़ा कमाल का काम किया है, कोई राजा कभी इतना सुरक्षित महल कभी नहीं बनवा पाएगा। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा फकीर जोर जोर से हंसने लग गया। राजा ने पूछा, अबे पागल, तू हंस क्यों रहा है बे? फकीर ने कहा, हुजूर, एक भूल रह गई इस महल में, और तो सब ठीक है मगर एक ही दरवाजा है, यही गलती हो गई। भाई, इससे भी तो दुश्मन भीतर जा सकता है ना, इसलिए आप भीतर जाएं और इस दरवाजे को भी बंद करा दें, चिनवा दें, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो पाएंगे, फिर कभी कोई दुश्मन घुस ही नहीं सकेगा कहीं से भी। राजा ने कहा, अबे पागल, अगर मैं इस दरवाजे को भी चिनवा दूं और भीतर हो जाऊं तो ये महल नहीं मेरी कब्र बन जाएगा। फकीर ने कहा, कब्र तो ये बन ही गया है, सिर्फ एक दरवाजा ही तो बचा है। एक दरवाजा है, दुश्मन नहीं तो कम से कम मौत तो इस एक दरवाजे से भीतर आ ही जाएगी। आप ऐसा करें कि भीतर हो जाएं, फिर मौत भी नहीं आ पाएगी। सम्राट ने कहा, जाने का सवाल ही नहीं, मौत के आने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। फिर फकीर ने कहा, तो फिर ठीक से समझ लीजिए, जितने ज्यादा दरवाजे थे इस महल में उतना ही जीवन था आपके पास, जितने दरवाजे कम हुए उतना जीवन कम हो गया। अब एक दरवाजा बचा है तो थोड़ा सा ही जीवन बचा हो गया, इसको भी बंद कर दीजिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा कि एक भूल रह गई है इसमें, और वो जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, जितनी हम सुरक्षा ढूंढते हैं उतनी ही असुरक्षा का अनुभव करते हैं। असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी का जो अनुभव है वो सुरक्षा

यानी कि सिक्योरिटी की खोज से ही पैदा होता है। ये एक दुष्ट चक्र है। असुरक्षा से बचने की जो आकांक्षा है वही असुरक्षा पैदा कर देती है। इसलिए असुरक्षा से राजी हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, मान लो कि आप असुरक्षित हैं। अचानक ही पाओगे कि असुरक्षा गायब हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर जाएं और मुसीबत को बुलावा दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है, सावधान रहें, लेकिन हर समय डरे रहने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ख्याल रखिएगा।

मैं हर रोज गुनाह करता हूं, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूं, तू रहमत से मशहूर है।

कई बार सवाल उठता है दोस्तों मन में कि वास्तविक प्रेम है क्या चीज। परेशानी तो ये है कि हम कोई डेफिनेशन चाहते हैं इसकी, कोई परिभाषा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको कुछ शब्द मिल जाएं। लेकिन मसला तो ये है कि जब आप बहुत डरे हुए होते हैं तब तक प्रेम कैसे पैदा हो सकता है। मतलब जब आप डरे हुए हैं तो प्रेम कहां से आएगा। आप देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी से शब्दों में उलझ जाते हैं। यदि मैं आपको बता दूं कि वास्तविक प्रेम है क्या, तो इसका आपके लिए कोई मायने नहीं होगा। आप सुनकर एक कान से दूसरे से निकाल देंगे। क्या ज्यादा जरूरी बात यह नहीं है कि वास्तविक प्रेम क्या है, ओरिजिनल प्रेम, इसका पता लगाने के बजाय हम इसका पता लगाएं कि हम प्रेम करते भी हैं या नहीं। हमारे अंदर प्रेम करने की कैपेसिटी, हमारे अंदर प्रेम करने की क्षमता है भी या नहीं। क्या हमें किसी फूल के प्रति, किसी जीव के लिए, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने दोस्तों के लिए कुछ ऐसा एहसास होता है। बहुत बढ़िया। क्या हमें इस धरती से प्रेम है, इसे जाने बिना ही हम सच्चे प्रेम की बातें करने लगते हैं। वाह, जिस प्रेम के बारे में हम इस तरह की बातें करते हैं वो झूठ भी तो हो सकता है। वो प्रेम नकली है, सिर्फ एक ही तरह की भ्रांति हो सकती है ये। जब तक मुझे डर है तब तक मैं प्रेम कैसे कर सकता हूं, सोचिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं दोस्तों कि भय से मुक्त हो पाना सबसे कठिन काम है। ये सारी दुनिया चल ही रही है डर पर। हम हर समय डरे रहते हैं, सड़क पर गिर जाएंगे, ईएमआई बाउंस हो जाएगी, बैंक में चोरी हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे परिवार की तबीयत खराब हो जाएगी। हर समय हम डरे ही रहते हैं, डर पर ही चल रही है ये दुनिया। कभी हम खुल के खुश होकर प्यार कर ही नहीं पाते बिना डर के। आप किसी भी डिक्शनरी में, शब्दकोश में भी देख लीजिए, वास्तविक का क्या मतलब है और प्रेम का क्या मतलब है। देखिए, कठिनाई ये है कि हम हमेशा इसी बात की शिक्षा देते रहते हैं कि हम क्या सोचें, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि हम किस तरह सोचें। और सबसे बड़ा मुश्किल मामला ये है कि क्या सोचा जाना चाहिए से लेकर किस तरह से सोचा जाना चाहिए में घुसना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या जाएं, इन दोनों चीजों का डिफरेंस, अंतर ही नहीं समझ में आता। तो दोस्तों, क्या सोचा जाना चाहिए से छूटकर कैसे सोचा जाना चाहिए पर ध्यान लगाइए, सारी समस्या वहीं से समाधान हो जाएगा। डरना बंद करिए और कैसे सोचें इस पर जोर लगाइए। अपना ख्याल रखिएगा।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।
1: एक बार कोरिया देश में एक नदी के किनारे संध्या के समय दो जैन भिक्षु यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था और दूसरा उसका जवान साथी। जैसे ही वो दोनों नदी पार करने के लिए तट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक युवती भी वहां खड़ी है। शायद उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वो घबरा रही थी। शाम ढलने को थी, सूरज उतरने लगा था और चारों तरफ अंधेरा पसरने लगा था। एक पल के लिए जो बूढ़ा भिक्षु था, उसके मन में ख्याल आया कि लड़की को अपने हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दे। लेकिन भिक्षु स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते थे। उसके मन में विस्फोट हो गया, जैसे वर्षों से दबी हुई सारी वासना रंगीन चित्र बनकर उसके पूरे दिल पर फैल गई। भिक्षु ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, वो मुश्किल में पड़ गया। वो तेजी से चलने लगा, घबरा गया। उसके सांसें तेज चलने लगी। स्त्री की कल्पना ने ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बुजुर्ग भिक्षु जैसे किसी भंवर में फंस गया था। किसी तरह से कांपते हुए उसने नदी पार कर ली। फिर सोचा कि अगर मेरा ये हाल है तो जवान भिक्षु का क्या हाल हुआ होगा। वो तो और भी डावाडोल हो गया होगा। कहीं वो मोह में ना पड़ जाए, इसलिए उसे तत्काल सावधान कर देता हूं। लेकिन पीछे मुड़कर देखा, तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। जवान भिक्षु उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाए लिए चला आ रहा था। ये तो हद ही हो गई, उसने सोचा। कहां हाथ के स्पर्श मात्र के ख्याल से ही मेरी हालत खराब हो गई, और ये तो कंधे पर बिठा के लिया चला आ रहा है। अनर्थ ही हो गया। नदी पार कर लेने के बाद युवा भिक्षु ने लड़की को कंधे से उतार दिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। 2 मील चलने के बाद दोनों आश्रम के द्वार पर जा पहुंचे। रास्ते भर बूढ़ा भिक्षु ने युवा सहयोगी से कुछ नहीं कहा, पर उसके अंदर बहुत ही गुस्सा उबल रहा था। गुस्से की वजह शायद ईर्ष्या भी थी। बुजुर्ग लोग प्रायः नौजवानों के प्रति ईर्ष्या भाव से भर जाते हैं। रात के भोजन के समय उसने युवा भिक्षु से कहा, सुनो, मैं गुरुजी से कहे बिना रह नहीं सकता। आज नदी पार करते वक्त तुमने उस लड़की को अपने कंधे पर क्यों बिठाया? युवा भिक्षु ने सहजता से कहा, यह तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने लड़की को कंधे पर उठाया और उसे नदी किनारे उतार भी आया, लेकिन आप उसे अभी भी ढोए जा रहे हैं क्या? आपने तो उसे स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हैं आप। इससे तो अच्छा होता कि आप उसे उठा ही लेते। कंधे पर बिना लिए भी ढोना हो सकता है, कंधे पर लेकर भी मन खाली हो सकता है। ध्यान रहे, आचरण नहीं, भाव जरूरी है।

भक्तिमय दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन FM रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। सत्यजीत रे एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने सिनेमा को जीवन बनाया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने इंडियन सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बनाया, बल्कि एक आर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। उनका नाम है सत्यजीत रे।

वेस्टर्न कल्चर्स का डीप एक्सपोजर पाया, एक हार्मनी जो उनकी सिनेमा में रिफ्लेक्ट होती है। रे इनिशियली कमर्शियल आर्टिस्ट और बुक कवर डिजाइनर थे। उनके हाथों से बनाए गए इलस्ट्रेशंस और टाइपफेस डिजाइन्स इंडिया में टाइपोग्राफी को एक नया डायमेंशन दे रहे थे। उन्होंने सिनेमा को एक सोच और लाइफ की तरह ट्रीट किया। कह सकते हैं कि उनके लिए रील और रियल जिंदगी में कोई बाउंड्री नहीं थी। उनकी पहली फिल्म पथेर पंचाली एक मास्टरपीस है जो इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा के मैप पर लेके आई। ये फिल्म फाइनेंशियल स्ट्रगल, लैक ऑफ इक्विपमेंट और बिगनर क्रू के साथ बनाई गई थी, फिर भी उसकी ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म ने दुनिया को हिला दिया। रे की फिल्म मेकिंग का सबसे खास पहलू था उनका रियलिज्म और सिंप्लिसिटी का अप्रोच। उन्होंने ड्रामेटिक लाइटिंग या हेवी लाइट सेट्स की जगह नेचुरल लाइट, रियल लोकेशंस और रियल इमोशंस को प्रेफर किया। चाहे रूरल बंगाल का गांव हो या सिटी का एक छोटा सा स्ट्रीट, जहां कैमरा वर्क हर सीन में जीता हुआ लगता था, उन्होंने नेचुरल लाइटिंग का यूज इस तरह किया कि आसपास की रोशनी ही नरेटिव को और इमोशनल बनाती है। लॉन्ग टेक्स का यूज करके रे ने पेशेंस और रिदम को सिनेमा में स्टैब्लिश किया। सीन्स को बिना आर्टिफिशियल इंटरप्शंस के फ्लो होने दिया जाता था। और जब हम साउंड की बात करते हैं, रे एक पायनियर ऑफ नेचुरल साउंड कैप्चरिंग थे। उनकी फिल्म्स में आप सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं सुनते, आप हवा का घूंघट, पेड़ों की सरसराहट और गांव का डिस्टेंट कॉन्वर्जेशन भी महसूस करते हैं। ये बिना आर्टिफिशियल साउंड ट्रैक के रियल वर्ल्ड साउंड डिजाइन का इफेक्ट था। सिनेमा का एक एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, एक यूनिक टेक्निक जो रे लाए, वो था स्टोरी बोर्डिंग और फ्रेम कॉम्पोजिशन का मेटिकुलस प्लान। उन्होंने पथेर पंचाली के लिए फ्रेम्स और सीन को पेंसिल से स्टोरी बोर्ड पर बनाया। इसकी वजह से कैमरा का मूवमेंट हर शॉट में प्रिसाइज और मीनिंगफुल होता, बिना ओवर एडिटिंग के। रे ने कभी फिल्म मेकिंग को नॉइस और स्पेक्टिकल बनने ही नहीं दिया। कैमरा रेयरली बिना पर्पस मूव होती थी। हर पैन, हर क्लोजअप, हर लॉन्ग टेक, हर शॉट नेचुरली स्टोरी को आगे बढ़ाता था। उनका आर्टिस्टिक सिग्नेचर वो था जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में रेयर था, ह्यूमनिज्म, सिंप्लिसिटी और अंदर के इमोशंस। कहानी कैरेक्टर्स के मन का पार्ट बन जाती थी। डायलॉग्स की जगह विजुअल्स और साइलेंसेस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते थे। रे की दुनिया में बैकग्राउंड साउंड कोई डेकोरेशन नहीं था, वो एक लिव्ड एक्सपीरियंस था, एक लिव्ड स्पेस था, ऐसे क्रिएटेड था जहां आप कैरेक्टर्स के साथ सांस लेते हो। उस स्पेस को, उस एनवायरनमेंट को, उस जगह को जो सीन में दिखलाई जा रही है, उसे फील करते हो। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, एक सिनेमैटिक एम्पथी थी। उनकी फिल्म्स जैसे चारुलता इमोशन और लोनलीनेस को विजुअल से डिपिक्ट करती है, और कंचनजंगा फैमिली को एनवायरनमेंट के साथ जोड़कर, कनेक्ट कर देखती है। ये सब रे के आर्ट का एविडेंस है, जहां कैमरा और स्टोरी एक ही सोल बन जाते हैं। रे ने कहा था, टेक्निक तभी काम आती है जब वो नोटिस ना हो और इमोशंस फोरग्राउंड पर हों। इस माइंडसेट की वजह से उनकी फिल्म्स टाइमलेस बन गईं। इसीलिए आज भी स्टूडेंट्स, डायरेक्टर्स और स्टोरी टेलर्स पूरे वर्ल्ड में रे के काम को स्टडी करते हैं, क्योंकि उनका सिनेमा एक मीडियम नहीं, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया, जहां नरेटिव, लाइट, साउंड और स्पेस एक साथ बिना फ्लैशी डिस्ट्रैक्शंस के एक ड्रीम जैसा वर्ल्ड बनाते थे, जिसमें आप खुद को महसूस कर सकते थे, खुद को देख सकते थे और उसमें जी सकते थे। जी के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है थोड़ी सी गुदगुदी का समय।
2: मिडिल क्लास प्यार इतना सीधा होता है कि लड़का रोज बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लड़की आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और 6 महीने बाद लड़का हिम्मत करके बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये 522 यहीं से जाती है। प्यार नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई।

बासु चैटर्जी, छोटी सी बातों में बड़ी जिंदगी दिखाने वाले निर्देशक। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी कहानियां अक्सर छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं। ऑफिस जाते वक्त बस का वेट, पड़ोस वाली बालकनी में खड़ी लड़की, सैलरी का इंतजार, घर वालों की चिंता और बीच में छोटी सी एक मुस्कान। इन्हीं छोटी बातों को बड़े पर्दे पर लाने वाले डायरेक्टर थे बासु चैटर्जी। 10 जनवरी 1930 अजमेर में जन्मे बासुदा ने सिनेमा को एक नया रास्ता दिया। ना बहुत ज्यादा शोर, ना बड़े सेट, ना हीरो की एंट्री पर हवा के झोंके, बस आम इंसान और उसकी आम सी लगने वाली लेकिन खास सी कहानी। उन्होंने अपना करियर इलस्ट्रेटर और कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया, पत्रिकाओं में काम किया, फिर फिल्म जगत में उतरे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बना ली। मिडिल क्लास के डायरेक्टर के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। उनकी फिल्में देखकर ऐसा लगता था जैसे हम अपनी ही कहानी देख रहे हों। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म रजनीगंधा की। एक सीधी सी कहानी, एक लड़की, दो लोग, दिल का कंफ्यूजन, बस। लेकिन इस फिल्म की खूबसूरती इतनी सुंदर, इतनी सच्ची है। हीरोइन कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं लेती, वो बस सोचती है, यादें आती हैं, दोनों लोग अलग अलग तरह उसके जीवन में जगह बनाते हैं। फिल्म नेचुरल आवाज का इस्तेमाल करती है, रियल लोकेशंस, सिंपल डायलॉग्स, ये सब बासुदा की पहचान बन गए। फिर आती है छोटी सी बात। एक शरीफ सा लड़का ऑफिस में काम करता है, रोज एक लड़की को देखता है, प्यार करता है, लेकिन कह नहीं पाता। ये कहानी किसी हीरो की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो बस स्टॉप पर खड़ा होकर सिर्फ देख ही रहा होता है। इस फिल्म में अमोल पालेकर का सीधा, हल्का सा, झिझक भरा किरदार बासु चैटर्जी के सिनेमा की पहचान बन गया। उनके हीरोज माचो नहीं थे, वो डर जाते थे, वो कंफ्यूज हो जाते थे, वो गलती भी करते थे और इसी वजह से वो अपने लगते थे। बासुदा की एक और मासूम सी फिल्म बातों बातों में, मुंबई की लोकल ट्रेन, रोज मिलना, छोटी सी बात से शुरू हुआ रिश्ता और धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्यार। इस फिल्म में शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था, शहर खुद एक किरदार था। जी हाँ, उन्होंने स्टूडियो के सेट से ज्यादा असली लोकेशंस इस्तेमाल की। रोड, ऑफिस, छोटा घर, छत, ये सब उनकी कहानियों का हिस्सा बने। उनकी फिल्म मेकिंग की सबसे बड़ी ताकत थी रिदम ऑफ डेली लाइफ। सीन तेज नहीं भागते थे, वो बिल्कुल वैसे ही चलते थे जैसे जिंदगी चलती है। उन्होंने कैमरा को ज्यादा हिलाया नहीं, ज्यादा ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं डाला, डायलॉग्स को भी बिल्कुल सिंपल रखा और कहानी को हवा में नहीं, जमीन पर रखा। उनकी फिल्में मिडिल क्लास सिनेमा का एक आम हिस्सा बनी, ना प्योर कमर्शियल, ना आर्ट सिनेमा, बस एक बीच का रास्ता जो आम आदमी को अपना सा लगता था। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं, टीवी सीरियल्स भी बनाए। राजानी और ब्योमकेश बख्शी जैसे नाम उनकी सोच की गहराई दिखाते हैं। उन्हें समझ थी कि कहानी का असली हीरो सच्चाई होता है। उनके सिनेमा में महिला किरदार भी बहुत नेचुरल होती थी, वो सिर्फ हीरो के साथ ही नहीं थी, उसके अपने डिसीजंस थे, अपनी सोच होती थी। बासु चैटर्जी की फिल्में चिल्लाती नहीं थी, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दिल में घुस जाती थी, कब कैसे पता भी नहीं चलता था। आज के दौर में जब कहानियां अक्सर बहुत लाउड हो जाती हैं, तब बासुदा की फिल्में याद दिलाती हैं कि सिंप्लिसिटी भी पावर होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए बड़े डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, एक नजर भी काफी है। जिंदगी को समझने के लिए बड़ी ट्रेजेडीज की जरूरत नहीं है,
छोटी सी बात भी सब कुछ बदल सकती है। 4 जून 2020 को बासु चैटर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी फिल्में आज भी रोज के जीवन की तरह चलती रहती हैं, लोकल ट्रेन जैसी। जब भी आप किसी बस स्टॉप पर खड़े हों, जब भी आप ऑफिस के कैंटीन में चुपचाप चाय पी रहे हों, जब भी आप किसी को कहना चाह रहे हों बट कह नहीं पा रहे हों, तब याद करिएगा, बासु चैटर्जी ने इसी खामोशी को सिनेमा बनाया। उन्होंने हमें बताया, हीरो बनना जरूरी नहीं, इंसान बनना जरूरी है। और शायद इसीलिए उनका सिनेमा आज भी पुराना नहीं लगता, वो हर नए दौर में फिर से जी उठता है। ये थे बासु चैटर्जी, छोटी सी बातों के बड़े कहानीकार।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। इतनी गंदा टाइप सिचुएशन में लड़की दो लड़कों के बीच कंफ्यूज थी। आज के जमाने में कंफ्यूजन और भी बड़ा है। अब चॉइस है, सीन करके रिप्लाई करें या टाइपिंग दिखा के डिसअपियर हो जाएं। लव ट्रायंगल से ज्यादा डेंजरस है ऑनलाइन स्टेटस बाबा।

0: गुरुदत्त, दर्द को खूबसूरती में बदलने की कलाकार। दोस्तों, कुछ लोग फिल्में बनाते हैं और कुछ लोग अपनी रूह स्क्रीन पर उतार देते हैं। ऐसे ही एक फिल्म मेकर थे गुरुदत्त। उनका असली नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोणे। 1925 में उनका जन्म हुआ था। गुरुदत्त सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे, वो एक शायर थे जो कैमरे से कविता उतारते थे। उनकी फिल्म देखिए, हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसी लगती है। उनकी सबसे मशहूर फिल्म प्यासा एक ऐसे शायर की कहानी जिसे दुनिया तब तक नहीं पहचानती जब तक वो मर नहीं जाता। ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं थी, ये समझ पर एक सवाल थी। क्या हम सिर्फ सफलता को ही सलाम करते हैं या इंसान को भी देखते हैं? गुरुदत्त की फिल्म मेकिंग की सबसे खास बात थी लाइट और शैडो का इस्तेमाल। उन्होंने अंधेरे को दुश्मन नहीं बनाया, उस अंधेरे में खूबसूरती दिखाई। उनकी फिल्म कागज के फूल में स्टूडियो लाइट्स का यूज इतना आर्टिस्टिक था कि हर सीन एक इमोशनल पेंटिंग जैसा बन गया। एक सीन में जब लाइट ऊपर से गिरती है और चेहरा आधा रोशनी में आधा अंधेरे में होता है, वो सिर्फ लाइटिंग नहीं, वो कैरेक्टर के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट था, दरार थी। गुरुदत्त साइलेंस का भी यूज बहुत खूबसूरती से करते थे। उनकी फिल्में जल्दी नहीं भागती थी, वो रुक कर ठहर कर महसूस करवाती थी। उनकी फिल्म साहेब बीवी और गुलाम के क्या कहने एक और मास्टरपीस। इस फिल्म में उन्होंने एक जमींदार घराने की गिरती हुई इज्जत को इतनी सेंसिटिविटी से दिखाया कि आज भी लोग उसे देखकर हिल जाते हैं। उनकी हीरोइन स्ट्रॉन्ग थी, दर्द से भरी हुई थी लेकिन टूटती नहीं थी। गुरुदत्त का सिनेमा ग्लैमरस नहीं, पोएटिक था। वो कैमरा को आंख नहीं, दिल बना देते थे। म्यूजिक उनकी फिल्म्स की जान होता था, गीत कहानी को आगे बढ़ाते थे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का साथ मिला। ऐसे गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाए जाते थे। लेकिन उनकी पर्सनालिटी और पर्सनल जिंदगी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड थी। सक्सेस मिली तो सही, लेकिन अंदर एक तन्हापन कभी खत्म ही नहीं हुआ। सिर्फ 39 इयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया। बहुत छोटी सी जिंदगी, लेकिन इतनी गहरी छाप छोड़ गए कि आज भी उन्हें लेजेंड कहा जाता है। गुरुदत्त ने हमें सिखाया कि दर्द को छुपाओ मत, उसे कला बना दो। उनकी फिल्में आज भी देखोगे तो लगेगा जैसे कि अपना दिल पढ़ लिया हो। उन्होंने सिनेमा को एक कला बनाया, एक इमोशन बनाया। और जब हम उनका नाम लेते हैं ना, तो सिर्फ एक डायरेक्टर या एक्टर नहीं याद आता, एक एहसास याद आता है। गुरुदत्त हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक कहानी है और अगर उसे सच्चाई से बताया जाए तो वो अमर हो जाती है।
1: हाँ, दे युवा, चलो आज पिक्चर देखते हैं।
2: नहीं नहीं, पिक्चर नहीं, आज हम लोग डिस्को जाएंगे।
1: नहीं,
2: चलो जल्दी से चेंज कर लो अभी।
1: क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस?
2: ये भी कोई कपड़े हैं? बिल्कुल बेकार लग।
1: बेकार तो तुम लग।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: उनके हीरो सिक्स पैक नहीं बनाते थे, वो सेविंग्स अकाउंट बनाते थे, क्योंकि असली टेंशन ये नहीं थी कि विलन कौन है, असली विलन था मंथ एंड।

ऋषिकेश मुखर्जी, जिंदगी को मुस्कुराकर दिखाने वाले कहानीकार। दोस्तों, इंडियन सिनेमा में कई बड़े नाम आए, कुछ ने बड़े सेट बनाए, कुछ ने बड़े डायलॉग्स लिखे, लेकिन एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्हें लोग प्यार से ऋषिदा बुलाते थे। नाम था ऋषिकेश मुखर्जी। उनकी फिल्म मेकिंग देखकर लगता था जैसे कि कोई कहानी अपनी ही स्क्रीन पर चल रही हो। ना ओवर ड्रामा, ना अननेसेसरी हीरोगिरी, बस सीधी साफ दिल से जुड़ी हुई जिंदगी। 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ। शुरुआत उन्होंने कैमरामैन और एडिटर के रूप में की। एडिटिंग ने उन्हें एक बहुत बड़ा लेसन दिया। फिल्म की जान होती है उसकी रिदम, और शायद इसी वजह से उनकी हर फिल्म में एक बैलेंस होता है। कॉमेडी भी होती है, आंसू भी होते हैं, लेकिन सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में। उनकी सबसे मशहूर फिल्म है आनंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का वो कॉम्बिनेशन। लेकिन कहानी का असली हीरो था जीने का नजरिया। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग सिर्फ लाइन नहीं है, ये जिंदगी का सार है। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स हमें लाइफ को हेवी नहीं, हल्का लेकर जीना सिखाती हैं। फिर आती है गोलमाल, एक सिंपल सी कहानी, एक लड़का, एक झूठ, और इस झूठ को बचाने के लिए हजार नए झूठ। लेकिन फिल्म में ऐसी टाइमिंग थी, ऐसी सिंप्लिसिटी थी कि आज भी लोग उसे देखकर हंस हंस के रुकते नहीं। उनकी कॉमेडी लाउड नहीं होती, वो सिचुएशन से निकल कर आती है। जैसे घर में पापा का स्ट्रिक्ट होना और बेटे का चुपके अपनी लाइफ जीना, चुपके चुपके। एक और मिसाल, लैंग्वेज पर मजाक, पर प्यार के साथ। ना किसी का मजाक उड़ाया गया और ना किसी को नीचे दिखाया गया। ऋषिदा का एक खास स्टाइल था, वो एक्टर्स को ओवर एक्टिंग करने नहीं देते थे। वो कहते थे, जैसे घर में बात करते हो वैसे ही बोलो, और इसीलिए उनकी फिल्म एक्टिंग नहीं लगती थी, वो रियल लगती थी। उन्होंने मिडिल क्लास को हीरो बनाया, ना बड़े महल, ना फॉरेन लोकेशंस, बस एक नॉर्मल सा घर, डाइनिंग टेबल, छोटी सी प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम में छुपी हुई एक बड़ी सी सीख। उनकी फिल्म बावर्ची में राजेश खन्ना एक ऐसे नौकर का रोल करते हैं जो घर घर जाकर उसे जोड़ते हैं, और फिल्म का मैसेज सिंपल था, घर टूटते नहीं, ईगो से तोड़ दिए जाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा परिवार के साथ बैठकर देखने लायक था। उनकी फिल्में आपको अनकंफर्टेबल नहीं करती थी, वो आपको इंसान बनाती थी। उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में बनाई, और हर फिल्म में एक कॉमन बात थी, ह्यूमैनिटी। ना हीरो परफेक्ट होता था, ना विलन पूरा बुरा होता था, सब इंसान होते थे, गलती करते थे, सीखते थे। आज के दौर में जब सिनेमा में शोर ज्यादा है, तब ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में याद दिलाती हैं कि कहानी दिल से बनेगी, तभी दिल तक पहुंचेगी। वो हमें हंसा कर रुला देते थे, और रुला कर जीना सिखा देते थे, और शायद इसीलिए उन्हें मिडिल सिनेमा का किंग कहा गया। ना प्योर कमर्शियल, ना आर्ट सिनेमा, एक बीच का रास्ता जो सबको अपना सा लगता था। ऋषिदा ने हमें बताया कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, पर उसे सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। और जब तक इंडियन घरों में हंसी गूंजती रहेगी, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में जिंदा रहेंगी।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पहले बालकनी रोमांस होता था, आज बालकनी में सिर्फ कपड़े सूखते हैं और पड़ोसी के वाईफाई का सिग्नल पकड़ते हैं। प्यार भी प्रैक्टिकल हो गया है।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze.
2: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
1: What a wonderful phrase, Hakuna Matata.
3: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो

बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदल जाता है, और तब

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: दोस्तों मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से

0: से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
1: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन हैं। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,
बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूँ। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

0: इससे पहले।
1: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं।
1: लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
1: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no passing craze.
2: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।
3: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: कोयले की कहानी।
6: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।

0: ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
1: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
3: अरे ओ शेरू, ओ शेरू किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हुर्रिया, हप हप हप, चलो चलो चलो, हे हा,
4: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
5: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
6: सोने भी नहीं देता।
4: अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
4: अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू,
5: क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
4: अरे इतने सारे पशु, मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
5: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
4: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं।
5: ओफो,
4: तब तेरी समझ में आएगा।
5: अच्छा जा जा जा जा जा, मुझे सोने दे।
4: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
2: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया

0: उसी की तरफ आ रहे हैं।
1: चलो चलो चलो
2: कृष्ण, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
3: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
2: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं? किसने किया ये सब?
3: वो काका शंभू है ना,
2: हाँ?
3: उसके पशु खेत में घुसाए थे।
2: और शंभू कहाँ था?
3: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
2: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
3: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
2: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
3: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
2: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
3: मेरे पास लाठी है ना,
2: हाँ?
3: इसी से, और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
2: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूँ। चलो।
3: चलिए काका, चल शेरू, आ।
0: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
2: शंभू! अरे ओ शंभू!
4: अरे ओ शंभू!
5: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया, सोने नहीं देता।
4: क्या है?
2: सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूँ। और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है।
5: आप मुखिया साहब, आपके खेत किसने उजाड़े?
2: मुझसे पूछ रहा है। तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
5: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे। किसी और के पशु घुसे होंगे।
3: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: तू चुप रह, तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
2: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
5: लेकिन वो मेरे पशु कहाँ हैं?
2: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
5: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
2: अच्छा चल जा, और देख,
5: हाँ?
2: आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना।
5: जी।
2: किसी और के खेत में ना घुसें।
5: जी।
2: आज तुझे छोड़ रहा हूँ।
5: जी।
2: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
5: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
2: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
3: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु, वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
2: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
3: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू, आ।
0: किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
6: मेरा किशन बड़ी काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश
5: काका।
6: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
3: अच्छा काका, चल शेरू आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: TIET प्रस्तुत करता है उमंग। तो श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
1: तो सुविचार है,
0: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
1: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
0: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
1: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
0: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
1: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
0: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
1: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
0: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
0: मैं कान्हाराम चौहान, गाँव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
1: श्रोता मित्रों, जो कान्हाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
0: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
1: जगह,
0: जिला और
1: राज्य।
0: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
1: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
0: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
2: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा,
3: कौन हो तुम?
2: मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुड़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाई आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब न। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।
2: अरे तुम्हें क्या हुआ?
3: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
2: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
3: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

0: बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।
1: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
2: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
3: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
1: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
4: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसे दो बिंदी से दर्शाते हैं। अह को कई शब्दों के आखिरी में लगाया जाता है, जैसे नमः।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे

या से कोई भी शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गाँव, जहाँ।

0: ભુરિયા સાહેબ તમે આયા અમારા રેડિયો ટેન્ટિયા ભીલ સ્ટુડિયોમાં, અને આપણા યુવા લોકોને રોજગાર સારું, ધંધા પાણી સારું માર્ગદર્શન આપ્યો. તમારો ઘણો ઘણો ધન્યવાદ.
1: આપણો બી બહુ બહુ ધન્યવાદ, મને ત્યાં મોકો દીધો. હજુ હું દૂસરા વિષય લઈને હજી આગળ મોકો મળ્યો તો આવીશ. ને આપણા યુવા જતરા બી નાના નાના હે આણા કે નાના નાની જાણા કે હજી કોઈ માર્ગદર્શનની જરૂરત થાય તો હજી ઓર માર્ગદર્શન.
0: બિલકુલ આવજો, તમારું સ્વાગત છે.
1: ધન્યવાદ.
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम. आपनो रेडियो आपडी बातें.
3: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में. और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कब बारिश हो. और बारिश होने के बाद वो किसान साथी हमारे अगली फसल की तैयारी करेंगे. लेकिन साथियों, हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, इससे पहले कुछ हमें अपनी जानकारी जुटाना चाहिए कि हमें कौन बीज अगली फसल में हमें बोना है. साथ साथ में हमें मेड़बंदान पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है. ऐसे में समतलीकरण अपनी जमीन को कर लेना चाहिए, अपनी खेती को कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पानी उस खेत में नहीं रुकेगा तब तक नमी नहीं बनेगी और साथ साथ में पैदावार भी आपकी कम होगी. क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जिस पथरीला ये चूंकि इलाका है, यहाँ पर पानी कितने सारे देते हैं तब पानी रुकता ही नहीं उसमें. तो कैसे अपने जो ढलान वाले खेत हैं, उबड़ खाबड़ वाले खेत हैं, उसको किस तरीके से उपजाऊ हम बना सकते हैं, समतलीकरण कर सकते हैं, चारों ओर मेड़बंदान कर सकते हैं, ये अभी खाली समय में हमारे किसान साथी काम कर सकते हैं. तो छोटी छोटी बातें हैं जो विशेष तौर पर उनको ध्यान देने वाली हैं. और यदि आपको लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जो झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं या फिर केबीके बना हुआ है, वहां पर जाकर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि हम कौन से बीज की तैयारी अभी से कर लें, उपचार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम खेती को एक आधुनिक पद्धति से अपनी खेती को करना चाहिए, कैसे वैज्ञानिक ढंग से हमें खेती करना चाहिए जिससे हमारी लागत कम लगे और उत्पादन हमारा अच्छा हो. तो हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों बताते रहते हैं और हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं. आपको पता होगा कि जो हमारे फसल जो रहती है उस पर जो हम जो उत्पादन करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जो फसल हम उत्पादन करके हम जो बेचते हैं उसमें किस तरीके से जीआई टैग लगाया जाता है, इस पर विस्तार से आज जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे. कौन सा कानून है, कैसे लगता है और इससे हमारे किसान साथियों को किस तरीके से लाभ हो सकता है, सारी जानकारी इस चर्चा में हम आप सुनेंगे. तो देर नहीं करते हैं, आपको सीधा इस चर्चा में ले चलते हैं और उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से जीआई टैगिंग हमारे भारत में की जाती है, कौन कौन से फसलों पर जीआई टैगिंग की जाती है और कैसे इसके जीआई टैगिंग का हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं. तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं. बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, आपनो रेडियो आपनी बातें.
4: टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक में वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं. दरअसल जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं. भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है. जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे. देश में इसके लिए बकायदा कानून है. ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है. यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं. और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है. खेती के मामले में इसका फायदा किसान

0: किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। GI टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ GI टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं, जिन्हें GI टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है, जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
1: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी GI टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में, थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। GI टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले GI यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो GI एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहां अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगन पल्ली आम है, अल्फेंजो आम है, चाय है, और इस तरह शाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
1: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी GI टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये GI टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
3: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
1: जी,
3: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकग्नाइज बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी जीआई रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रीब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं, और ये जो बॉडीज होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है, जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है।
1: जी, तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है। इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है, और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है हमारे देश से, बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
4: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व तो और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करे, और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान, बासमती चावल का जीआई टैग, जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया, चेन्नई जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला। उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है, इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर, जहां जहां हमारा, हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं, और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें, जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले, उसका लाभ मिले, क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है, निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है?
4: देखिए, जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक, उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है। जीआई टैग का, जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया, जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा। और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं, इसके लिए श्रेय हमारे हमारे किसानों को जाता है।
1: बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे डॉक्टर बजाज, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
2: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, जैसे अभी हाँ। कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं
1: जी।
2: और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए, जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था
1: जी।
2: कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब ये जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, भाई दूसरे को तुम नाजायज, हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूँ और इससे मुझे जो है एक एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक संस्था यहाँ पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
3: मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल।
3: दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में। उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वर्ल्ड वाइड से सिलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वो विमेन है, तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं, और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदे चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
4: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू

0: तो सिस्टम में
1: जी
0: एक GI रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
1: जी।
0: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने GI टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने GI प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में APIDA ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
1: जी।
0: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था। आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक GI प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक GI टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं। और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो GI ले चुके हैं, या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता। और हमारे जो किसान है, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है, वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
1: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहां पर तैयार किया है, उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहां पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहां पर GI टैगिंग मिलती है, तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें, तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
2: सभी को फायदा मिलता है
1: जी।
2: जब GI टैगिंग हो जाता है, तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
1: जी।
2: अब बासमती GI टैग हुआ, तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है, वो उसका सबको लाभ मिल रहा है। ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का लाभ रह गया। जो अपने उस क्षेत्र को, जो कि आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, उस आइडेंटिफाइड क्षेत्र से अगर वो अपना उत्पाद लेकर आता है, तो वो उसका वही उत्पाद है और उसको वो उसका जो प्रीमियम है वो क्लेम कर सकते हैं। खाली बासमती की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत से, जैसा मैंने कहा अभी दार्जिलिंग चाय की बात करी, आम है, हमारे अंगूर हैं, शाही लीची है, और भी बहुत से ऐसे उत्पाद और प्रोसेस फूड हैं, जैसे रसगुल्ला है, बहुत से ऐसे खास जो उत्पाद हैं हर क्षेत्र के जुड़े हुए। तो उनके जो उत्पाद हैं, जो जो उन उत्पादों को उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सदियों से उसका उत्पादन कर रहे हैं, उनको लाभ मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बेचने में आसानी है, क्योंकि खरीदार को पता है कि ये विशेष है, मैं जाता हूं वहां जाएंगे। आप छोटी सी बात समझिए, आप भी कहीं जाते हैं, बोले फलां के फलां खाने की चीज बड़ी मशहूर है, तो आप चाहे थोड़ी दूर ही क्यों ना जाना चाहे, वहां जाते हैं और वहां जाके एक जरूर खाते हैं और बार बार जाते हैं। इसी तरह ये या जाते हैं, जब कभी आप किसी राज्य में जा रहे हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो बोलते हैं कि वहां की एक खास चीज है। जैसे मैंने कहा बनारस की साड़ियां बहुत मशहूर हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं जरूर वहां खरीदूं और उसका जो है वो मुझे भी लाभ मिले।
1: बिल्कुल, कश्मीर जा रहे हैं तो शॉल लेना बहुत जरूरी है,
2: केसर खरीदेंगे वहां का।
1: तो ये दक्षिण में जा रहे हैं तो यहाँ का सिल्क बहुत मशहूर है। बिल्कुल,
2: तो बेचना आसान है, और दूसरा ये कि उसका फिर उसको प्रीमियम भी मिलता है, क्योंकि खरीदार को भी मालूम है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो एक विशेष चीज है, ये आम चीज नहीं है जो मैं खरीद रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ इसी क्षेत्र से, इसी व्यक्ति विशेष से, इसी जो है वो एरिया से मिलती है। तो इसलिए एक उसको भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ, एक यूनिक प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूँ।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर बजाज, आप कह रहे हैं कि एक प्रीमियम मिलता है कस्टोडियन को, तो ये प्रीमियम कौन देता है और इससे फायदा क्या होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: खरीदार देता है ना प्रीमियम, वो खरीदार जो है वो जाता है, उसको एक तो उसको पता है कि धान, जब उदाहरण जब आपने दिया बासमती का ही, तो बासमती के जो खरीदार है वो जो रेट देगा और दूसरे जो धान है उसमें फर्क तो रहता ही है
1: जी।
2: तो बासमती का सबसे महंगा चावल, बहुत सी वजह है, उनमें से एक वजह तो ये भी है कि वो जीआई टैग है और दुनिया भर में बासमती को हम ठीक दाम पर बेचते हैं, लोग इसको जो है एक्सपोर्ट में हमें प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं, जिसका ऑफकोर्स किसानों को लाभ भी मिलता है, तो इसी वजह से, क्योंकि एक जीआई टैग है। और भी बहुत सी बातें हैं, उसकी विशेषता है, लेकिन विशेषता ये भी है क्योंकि ये जीआई टैग है, एक खास भौगोलिक पहचान है इसकी।
1: बिल्कुल, जीआई टैगिंग मिल गई है तो विश्व भर में उसकी पहचान हो गई है, विश्व की नहीं अपने देश की बात कर ले तो पहचान हो गई है। जब भी कभी वहां उस क्षेत्र में जाते हैं तो हम उसका स्वाद या फिर उस चीज को लेना जरूर पसंद करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हम कोई भी उत्पाद यहां पर तैयार कर रहे हैं तो उसकी जीआई टैगिंग जरूर करवा लें। फायदे अनेक हैं, हर एक को इससे फायदा मिल सकता है, और किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है जीआई टैगिंग और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या किसी तरह की कोई समस्या भी आती है, इस पर भी हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: कृषि उत्पादों की भौगोलिक पहचान के बारे में। जी हाँ, जीआई टैगिंग पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। क्या होती है ये, किस तरह की इसकी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में तो हमने जान लिया और इससे फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी विशेषज्ञों ने हमें विस्तार से बताया है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में जाते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
0: जी।
1: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहां किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआई एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
0: और जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहां पर सवाल उठाए जा सकते हैं, ऑपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
1: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है जिसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
0: जी,
1: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशन आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहां पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे बासमती का एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जांपल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
0: जी।
1: और इसीलिए जो है बाहर के कंट्रीज, बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
0: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहां पर समझाया है राजेंद्र जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
2: देखिए दीदी, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
0: जी,
2: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहां लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
0: जी।
2: और यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
0: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका

0: उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
1: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दीदी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
0: जी।
1: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें, जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में, साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक FPO बनाकर, FPCs बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
0: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है? ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूव हो?
2: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कश्मीरी कारपेट्स में QR कोडिंग एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है, जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं।
0: जी,
2: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में, एक US की कंपनी राइस टेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम US में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें APIDA और CSIR का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की USPTO के सामने, और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस ये यहीं प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, US कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया, तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
0: तो बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहाँ पर फिर से एक बार बात कर रहे थे, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे, हम एपिडा की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
1: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
0: बिल्कुल, तो बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
1: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा तुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सके। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
3: देखिए, ये निश्चित रूप से अदिति आपकी बात सही है और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा के और उनको एक बड़ा बाजार दिया जा सकता है। और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं और उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके और जो हमारी इस तरह की जो छोटी छोटी प्रोडक्ट है उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन जीआई करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई के लिए आगे लेकर आए, ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
0: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जीआई टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब हमारे किसानों को ये समझने की जरूरत है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपनी बातें।
0: जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहां पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जीआई टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहां पर जीआई टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहां पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
1: वही प्रक्रिया
0: जी,
1: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका जीआई टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो जीआई टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं, हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो जीआई टैग की आवश्यकता है। और जब जीआई टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है वो जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष जीआई उत्पाद है।
0: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
2: बिल्कुल,
0: हमारी
2: जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
0: जी।
2: उसमें जो जीआई ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि जीआई प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए जीआई प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है, बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही हैं, लेकिन बनारसी उस वो जो है बनारसी साड़ी के जीआई का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है. इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस मानी गई है. उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है. इसमें ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है. तो हमारा जीआई एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर जीआई ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट जो हैं काफी फोर्थराइट है. इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा. स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शन फाइल कर रही है और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है. अगर हम जीआई लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो एसडब्ल्यूए स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है.
0: जी बिल्कुल. तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं. अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं. बिल्कुल जीआई टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए. तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी. डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी. किसानों की आय को दोगुना करने में ये जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
3: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है.
0: जी.
3: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो.
0: जी.
3: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी.
0: जी.
3: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है.
0: जी.
3: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है.
0: जी.
3: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है. किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ.
0: जी.
3: और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा. अगर हम ये निश्चिंतता अगर अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
0: वो खरीदेगा ही और लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा. बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा?
2: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए.
0: जी.
2: क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में. अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है. इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है.
0: बट क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखती है.
2: गुणवत्ता
0: अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा. और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पे सुहागा साबित हो जाता है. डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका?
1: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया. क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला. तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं। प्रीमियम मिलता है, आय में वृद्धि तो अवश्य होती है, इसीलिए इसका बड़ा प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो जीआई टैगिंग देखिए कुल मिलाकर काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, आय में वृद्धि, एक विशेष पहचान, और अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो और भी ज्यादा हमारे लिए सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए जीआई टैगिंग की ओर आप अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं, हमारी सरकार की ओर से भी यहां पर आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
5: रेडियो टांटिया भील 90.

0: ये बातें हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं वो छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे जो उनके लिए बेहद जरूरी है। तो यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी साथ साथ में केबीके में जाकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं, ये प्रोग्राम है उन लोगों का जो अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में कुछ विचार रखते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छे तरह से डिसिप्लिन में जीते हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे, हो सकता है हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनका नाम है सेल्वम। बाकी सेल्वम भाई खुद अपने बारे में बताएंगे। तो सेल्वम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू अवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: शुरू करते हैं प्रोग्राम को। और सेल्वम भाई, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए हमें बताइए, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन है आप?
1: सर, मेरा नाम सेल्वम है, के सेल्वम। मैं इंदौर में रहता हूं और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है दिल्ली बेस्ड, सेलजेन बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड, उसमें रीजनल बिजनेस मैनेजर के तौर पे काम करता हूं। मैं एक सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूं सर, और मुझे 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है इस फील्ड में।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेल्वम भाई। तो दोस्तों, आपने सुना, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति जब सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बनता है तो जाहिर सी बात है उसकी सॉफ्ट स्किल, अपने आप की सॉफ्ट स्किल भी बहुत बहुत रिफाइंड होती हैं। तभी तो वॉक द टॉक की कहानी है, जो आपने किया है वही तो आप सिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सेल्वम भाई की फरमाइश पर।
2: देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

ठिकाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसमें है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: बहुत बढ़िया सेल्वम भाई, आपके क्षेत्र में जैसे कि आप एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं और फील्ड में भी काम करते हैं, सेल्स में भी काम करते हैं, अगर इस फील्ड में कोई बच्चा, कोई न्यू जनरेशन, कोई यंग फेलो करियर बनाने की कोशिश करे तो उसको आप क्या सलाह देंगे?
1: सर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं काफी समय से, काफी वर्षों से इस फील्ड में हूं और मैं इंटरव्यूज लेता रहता हूं, नए जो बच्चे आते हैं उनसे मैं इंटरेक्ट करता रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं समझने की कि वो जीवन में क्या चाहते हैं। और मुझे ये समझ में आया कि कुछ स्किल्स जो बहुत जरूरी है, नए जो जनरेशन आ रही है, अगर वो इस फील्ड में फार्मास्यूटिकल सेल्स और मार्केटिंग में बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी सुनहरे अवसर हैं सर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, काम बहुत है मार्केट में। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है अच्छे लोगों की कमी है आज भी। इसका मतलब जो नई जनरेशन आ रही है उनको मेरा एक मैसेज है कि वर्क ऑन योर स्किल्स। फर्स्ट इज हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट का एक अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, वो आप में कॉन्फिडेंस लेके आता है। इसका मतलब अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, हार्ड स्किल्स पे काम करें। और उसके बाद आता है सर सॉफ्ट स्किल्स। सो दे आर नॉट ओनली सॉफ्ट स्किल्स, दे आर लाइफ सेविंग स्किल्स, नाउअडेज इट इज कॉल्ड। व्हाई लाइफ सेविंग स्किल्स? बिकॉज अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर आप अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पिच कर पाते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक अच्छे सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन पाएंगे। इसके अलावा क्या आप समय बद्धता का ध्यान रखते हैं? क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं? क्या आप अच्छे से निगोशिएट कर पाते हैं? ये कुछ ऐसी स्किल्स है जो जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए सर बहुत बहुत जरूरी है। तो मेरा एक ही मैसेज है कि अपने स्किल्स पे काम करें और जो भी काम करें उसको दिल से और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, कोशिश लगातार करते रहें।
0: बहुत बहुत बढ़िया सेल्वम भाई, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना, और जो भी यंग प्रोफेशनल्स सुन रहे हैं सेल्वम को, उन्होंने बहुत साफ तौर पर अपनी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की बात की है। उनको मेजर करते रहिए, उनको रिव्यू करते रहिए कि आप किस हद तक अपने मुकाम में कामयाब हुए हैं। आपके अचीवमेंट्स बहुत जरूरी हैं आपको ये बताने के लिए कि आप कहाँ खड़े हैं। एक लाइन होती है बहुत पतली सी असफलता और सफलता के बीच में, हमें पहचानना जरूरी है कि हम सफल हुए या असफल हुए, जिससे कि हम अपने एम को दोबारा से रिव्यू करके ठीक कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी बात। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: सर्वम भाई, मुझे ये बताइए, लोग आपके बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी क्या रखते हैं? होता होगा ना, लोग गलत फहमी पाल लेते होंगे कि सर्वम जी ऐसे हैं वैसे हैं, और आपको भी पता होगा कि क्या गलत फहमी वो लोग रखते हैं।
1: सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो मैं ज्यादा लोगों के फीडबैक लेने में विश्वास नहीं करता हूं सर। मैं केवल उनसे फीडबैक लेना पसंद करता हूं जो मेरे मेंटोर्स हैं, जो गाइड है, जिन पे मैं विश्वास करता हूं। गलत फहमियां मैं उनकी सुनना पसंद करता हूं जो मेरे क्लोज निट लोग हैं, जैसे मेरे क्लोज मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे क्लोज फ्रेंड्स, इवन द कंपनी इन विच आई वर्क, मेरे बॉसेस, मेरे कलीग्स। तो अंटे अनलेस की कोई बोलता है कि आपको मुझसे कोई समस्या है, मैं उसका जवाब देने में सर या क्लेरिफिकेशन देने में विश्वास नहीं रखता हूं। तो ऐसी कोई मैंने ऐसी गलत फहमी ऐसी सुनी नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार रखूं और अच्छी दोस्ती रखूं सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। मेरा ये सवाल पूछने का तात्पर्य पर्पज सिर्फ इतना ही रहता है सेल्वम भाई की, अगर हम ये जान लें कि हमारे अंदर क्या कमी है, जो कि हमारे ट्रस्टेड लोग, जैसा आपने कहा, जो कि आपने कहा मेंटर्स हैं, जो हेल्पर हेल्पिंग हैंड हमेशा आपके साथ रखते हैं, जो सच बोलने में नहीं डरते, तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि कहीं हम गलत हो गए और उसे हम ठीक कर लें। क्योंकि अगर हम अपने ग्लोरियस पास्ट में ही जीते रहे और अपने आप को ठीक ना करें, तो जाहिर सी बात है लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे लोग हमसे दूर हो जाना शुरू हो जाएंगे और मार्केट में हमारी या दुनिया में या जिंदगी में हमारी जरूरत नहीं रह जाएगी। बड़ी ही अच्छी बात कही सेल्वम भाई, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक और बहुत खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत बढ़िया। सेल्वम भाई आगे बढ़ते हैं, मुझे अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में बताइए।
1: जी सर, बचपन एक ऐसा समय है सर, हम फिर से हमेशा जाकर उसमें जीना चाहते हैं। बचपन का वो हर समय, अपने दोस्तों के साथ खेलना, स्कूल जाना, कुछ ऐसी यादें जिसे अब हम कभी भुला नहीं सकते। उसमें से एक याद है सर जो मेरे साथ हमेशा रहती है, मैं हमेशा उसको याद करता हूँ। वो है जब मैं छोटा था तो मुझे गन चाहिए था, मैं एक गन खरीदना चाहता था। पिस्टल, एयर गन होती थी सर वो,
0: जी हाँ जी हाँ,
1: जो मारते थे तो उसका एरो जाके वो कांच पे चिपक जाता था।
0: अरे वाह।
1: तो मेरी बहुत दिली इच्छा थी सर। मैं एक दिन पापा के साथ मार्केट गया, मैंने वो गन देखी और मैं उसके लिए दीवाना हो गया सर।
0: वाह।
1: मैंने आके 2-3 दिन अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान किया उसके लिए, मुझे अभी बहुत अच्छे से याद है। लाल रंग की वो गन थी। और फिर एक थक हार के मेरे पिताजी मुझे ले गए और मुझे वो गन दिलाई।
0: ओके।
1: और सर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो गन मेरे साथ कुछ 8-10 सालों तक हमेशा मेरे साथ रही सर। दैट वॉज वन ऑफ माई प्राइज पोसेशंस।
0: वाह,
1: वो एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ सर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात बताई आपने, बचपन की बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सी याद। जाहिर से बात है, इस तरीके की चीजें हम हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह की कोई याद आपके पास है, कोई चीज आपके पास है जो आपके पेरेंट्स ने या किसी फ्रेंड ने आपको दी होगी तो, और आपने उसे संभाल के रखा होगा, फिर भी मैं आपसे आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की चीजों को जरूर अपने पास संभाल के रखें। वो बड़ी प्यारी यादें होती हैं। बहुत खूब।

0: सेल्वम भाई, ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके अपने लिए, और जाहिर से बात है हम आपका जवाब सुन के सीख लेंगे। आपकी सबसे बड़ी असफलता क्या रही, फेलियर क्या रही? और फेलियर मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप बुरा ना मानिएगा, क्योंकि हम फेलियर से जब तक सीखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपने उस अनुभव से क्या सीखा?
1: सर, ज्यादातर जो प्रोजेक्ट मैंने किए हैं या अगर जिस जगह मैंने काम किया है, आई हैव बीन अ परफॉर्मर। बट 2010 का एक समय था कि जीवन में चीजें बहुत अच्छी चल नहीं रही थी। मैं थोड़ा परेशान था, डिप्रेस था। मैं चाहता था कि मेरे जीवन में कुछ चेंज आए। तो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी मैंने ज्वाइन की जयपुर में।
0: ओके।
1: मैं अकेला गया वहां पे और सिर्फ 10 महीने 11 महीने वहां पे काम कर पाया। कहीं ना कहीं मैं शायद वो जो टीम वर्क, टीम में काम करने की जो एक जज्बा होता है, तरीका होता है, शायद उसको मैं सीख नहीं पाया।
0: ओके।
1: तो वो मेरे लिए एक लर्निंग थी, वो एक मेरे लिए असफलता थी। कंपनी ने मुझे चांस दिया, मौका दिया, पर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया सर। मैं टीम में, टीम वर्क में काम नहीं कर पाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी असफलता थी। उसके बाद मैंने हमेशा ये ध्यान रखा है कि मैं टीम की एक इंपॉर्टेंट कड़ी बन के काम करूं, ताकि उसके आसपास जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, और हम जिस जगह भी काम कर रहे हैं उसको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके सर।
0: बहुत ही खूबसूरत बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही सेल्वम भाई आपने। हम जब ये रियलाइज कर लेते हैं अपने आप ही, कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें बताए, लेकिन अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करना जानते हैं, अपने अंदर झांकना जानते हैं, और गलती पता चल जाती है तो उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, न कि हम ईगो में रहें और उसको संभालने की कोशिश ना करें और हमें ये लगे तो हम तो ठीक हैं बाकी दुनिया गलत है, ऐसा होता नहीं। बड़ी खूबसूरत बात कही। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया। सेल्वम भाई, मुझे बताइए, अगर आपको किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो वो क्या होगी?
1: अगर मुझे कभी मेरे जाने के बाद भी अगर लोग याद करें एक बात के लिए, तो ये मैं ये चाहता हूं कि वो मुझे इसलिए याद करें कि एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा दोस्त था जो हमेशा मुस्कुराता और हंसता रहता था और आसपास खुशियां फैलाता था।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी ही खूबसूरत बात। जाहिर सी बात है, हम चाहेंगे कि लोग हमसे हर्ट ना हो, हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, हम उनकी हेल्प करते रहे और लोग भी हमें उस बात से ही पहचाने। बड़ी अच्छी बात कही भाई। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत इसी अंदाज में।

0: सेल्वम, मुझे अपने जीवन के तीन सबसे इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, मोटिवेटिंग लोगों के बारे में बताइए, तीन, और बताइए कि उन्होंने आप पर किस तरह प्रभाव डाला, किस तरह मोटिवेट किया आपको।
1: जी बिल्कुल सर, तो मेरे जीवन के जो तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है, जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं, सर वो सबसे पहले व्यक्ति तो मेरे पिताजी हैं सर, मेरे फादर। ही वॉज ऑलवेज हम्बल, हेल्पफुल। उनसे मैंने एक चीज सीखा है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ जुड़े रहो, जहां तक कोशिश हो लोगों की मदद करते रहो, और किसी को किसी तरह से आपके व्यक्तित्व से, आपके कार्य से नुकसान ना पहुंचे, और अपने कार्य, जो भी कार्य करो उसको प्यार करो और पूरे दिल से करो। पहले ये है सर। दूसरे जो मैं जिनसे बहुत प्रभावित हूं अपने जीवन में, वो हैं सचिन तेंदुलकर।
0: ओके।
1: मेरे चाइल्डहुड हीरो हैं सर सचिन तेंदुलकर।
0: जी हाँ।
1: हम जब छोटे थे तब से हमने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है। उनसे मैंने एक चीज सीखी है, वो है हम्बल, बीइंग हम्बल एंड हैविंग ह्यूमिलिटी। वो अपने करियर के पीक पे रहे, पर कभी किसी तरह की कंट्रोवर्सी में कभी नहीं रहे सर। उन्होंने जो जवाब दिया अपने काम से दिया, अपने बल्ले से दिया, कभी किसी तरह की लड़ाई झगड़े में वो इन्वॉल्व नहीं रहे। एक समय था जब उनका करियर बहुत ही खराब चल रहा था, लोग बोलने लगे कि अब ये हो सकता है टीम से बाहर चले जाएं, बट उन्होंने कमबैक किया सर, अपने बल्ले से जवाब दिया। और वो दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं, जिन्हें उन्होंने 35,000 रन से ज्यादा का रन बनाया अपने करियर में, और 100 सेंचुरी से ज्यादा बनाई है। और आज भी मैं देखता हूं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आई कैन सी दैट हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी इन हिम। सो दिस क्वालिटी आई वेरी मच एडमायर। तीसरे व्यक्ति हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं सर, वो हैं हमारे द लेजेंड श्री अमिताभ बच्चन जी। बीइंग अ सुपरस्टार टू अ टाइम इन 90s, एक के बाद एक लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। उन्होंने एक ब्यूटी पेजेंट कराया देश में, वो भी कंट्रोवर्सी में आ गया, वहां भी उनको बहुत नुकसान हुआ। एक समय था जब वो 90 करोड़ से ज्यादा के लॉस में आ गए, फिल्में मिलना बंद हो गई, बट उन्होंने हार नहीं मानी सर। अपने दोस्त के पास गए, एक दोस्त की मूवी की उन्होंने, जिसका नाम था मोहब्बतें, स्मॉल स्क्रीन में आए, कौन बनेगा करोड़पति जैसा शो होस्ट किया, उनका जो भी कर्ज था उसको चुकाया, और आज 80 की उम्र में भी एक सक्सेसफुल एक्टर हैं और हमारी फिल्मी जगत के लेजेंड हैं सर। तो ये तीन लोगों ने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है सर। मेरे पिताजी से मैंने सीखा है कैसे सबके साथ जुड़ के रहना, मदद करना। सचिन तेंदुलकर से मैंने सीखा है कैसे हम्बल रहना, कुछ भी हो जाए जीवन में, कितना भी ऊंचाई में आप चले जाओ, कितना भी आप सक्सेस प्राप्त कर लो, लेकिन बी हम्बल। एंड श्री अमिताभ बच्चन जी से मैंने सीखा है कि फेलियर आएंगे आपके जीवन में, पर हारना नहीं है, फिर से कोशिश करना है, फिर से खड़े होना है।
0: भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, तीन शानदार पर्सनालिटीज। दोस्तों आपने सुना, मैं सेल्वम भाई की बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। सेल्वम भाई ने कहा कि सचिन तेंदुलकर इतने अम्बल हैं, इतने विनम्र हैं कि उन्होंने कभी भी अपने आप को सबसे पहले नहीं रखा, टीम को रखा और अपने बल्ले से ही जवाब दिया। एक जो चीज मैं जोड़ना चाहूंगा वो ये कि एक बार सचिन तेंदुलकर को कैप्टन भी बनाया गया, लेकिन वो कैप्टन के रोल में फिट नहीं हुए, तो वो बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही ह्यूमिलिटी से कैप्टनशिप को छोड़कर नीचे उतर आए। उन्होंने कहा कि मुझे बल्लेबाज ही रहने दीजिए, कैप्टनशिप किसी और को दे देनी चाहिए, मुझे खेलने दीजिए, मुझे सिर्फ बैटिंग करने दीजिए। तब धोनी कैप्टन बनाए गए, और उन्होंने धोनी के अंडर में, यूं देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर का साइज, मतलब उनके कैरेक्टर का साइज बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी विनम्रता ऐसी थी कि उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं सिर्फ बैट्समैन रहूंगा, तुम कैप्टनशिप करो। और उसके बाद फिर शानदार परफॉर्मेंस आई। बहुत खूब कहा, बहुत खूब कहा सेल्वम। तो चलिए दोस्तों, इसी रंग में रंगा हुआ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

से अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल की

0: सेल्वम, मुझे ये बताइए, फिट और सक्रिय रखने के लिए, आप अपने आप को फिट और एक्टिव रखने के लिए क्या करते हैं? आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या है?
1: बिल्कुल सर, तो मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है सर कि मैं पिछले 30 वर्षों से मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने आप को फिजिकली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखूं, एक्टिव रखूं। तो मेरा पसंदीदा काम यह है कि सर मैं सुबह उठता हूं, अपनी चाय बनाता हूं, पीता हूं और मैं स्पोर्ट्स शूज पहनता हूं सर। मैं कम से कम आधे घंटे वॉकिंग जॉगिंग करता हूं, थोड़ा बहुत एरोबिक्स करता हूं। उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि अपने मनपसंद के गाने सुनूं सर, टू हेल्प मी डी स्ट्रेस। सो दीज आर द टू थिंग्स विच आई प्रिफर डूइंग टू कीप मी मेंटली एंड फिजिकली फिट सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना सेल्वम किस तरह से अपनी जिंदगी को बैलेंस रखते हैं, फिजिकली अपने आप को फिट रखते हैं, मेंटली किस तरह से वो अपने आप को फिट रखते हैं। सुनने में ये बातें बड़ी ही आसान सी लगेंगी, लेकिन जरा आप नाके देखिए, जिंदगी में बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है और इनके इफेक्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं। और गौर कीजिएगा दोस्तों, ये सिर्फ 2-3 दिन या 2-3 महीनों की कहानी नहीं है, इसको सालों की प्रैक्टिस से बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स तक ले जाया जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: सेल्वम भाई, आज की दुनिया डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, बहुत डिजिटलाइज्ड हो गई है। सोशल मीडिया ने दुनिया को कैप्चर कर रखा है। अगर आपको अथॉरिटी दी जाए, आपको अधिकार दिया जाए, इमेजिन कीजिए, तो क्या आप सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ बदलना चाहेंगे और वो क्या होगा?
1: सर, सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है। हम जब नए नए नौकरी में आए थे या छोटे थे तो ये फोन्स नहीं होते थे, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, तब भी समय चलता था, तब भी काम होते थे, तब भी हम जाते थे अपने काम को करते थे और तब भी लोग जुड़े रहते थे, कनेक्टेड रहते थे। आज सोशल मीडिया के आने के बाद आज हमको कोई भी खबर सेकेंड्स में पता चल जाती है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा कौन सा दोस्त क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम इसके गुलाम होते जा रहे हैं। सर, हम ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं। कई बार मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ, देखता हूँ उनको जब बैठ के पढ़ाता हूँ, तो बिना कैलकुलेटर के, बिना मोबाइल फोन के उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। और आज का जमाना सर प्रदर्शन ज्यादा हो गया है। कोई छोटा से छोटा काम कर रहा है, वो उसको पोस्ट डाल रहा है, उसको दुनिया को बताना चाह रहा है, जबकि वो काम बिना दूसरों को बताए भी किए जा सकते हैं। तो अगर मेरा बस चले और मैं कुछ कर सकूं, रोक सकूं, तो मैं ये रोकना चाहूंगा कि लोगों के जीवन में एक कोटा दे दिया जाए सोशल मीडिया या मोबाइल फोन यूज करने का, मे बी एक घंटा या दो घंटा, उससे ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते। उसके बाकी का समय आप अपने काम में लगाएं और समय बचता है तो कुछ क्रिएटिव करने में लगाएं जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, मुझे गाने गाना अच्छा लगता है, मुझे वॉइस एडिटिंग करना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वैसे ही आप अपने बाकी समय अपने हॉबी के लिए आप यूज करें।
0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही। इस बात को टाइम एंड अगेन दोहराया जा रहा है। तमाम तमाम स्टेटस से लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत अकेला बना दिया है और हम अपने आप को पेंट करने में बहुत इंटरेस्टेड है कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। दरअसल किसी ने पूछा ही नहीं, और अगर पेंट कर भी दिया तो कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि यूं देखा जाए तो सब लोग अपने को ही पेंट करने में लगे हुए हैं। होगा क्या?
1: बिल्कुल सर,
0: आप अकेले ही पढ़ते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई मुझे नहीं देख रहा। इसका एक बड़ा आसान तरीका है, आप ये देखिए कि क्या आप किसी और को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्या। अगर कर रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। वैसे उम्मीद बड़ी ही खतरनाक चीज है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: सेल्वम, हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहिए, कोई संदेश दीजिए उन्हें।
1: सर मेरा, मेरे तमाम सुनने वालों के लिए एक संदेश है, वो है कि जीवन की लग्जरीज क्या है। लोग पैसों के पीछे भागते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत पैसा, पर मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि अगर आपके जीवन में ये 6 चीजें हैं तो आप जीवन के सबसे सफल और सबसे अमीर इंसान हैं। पहला ये कि अगर आपके पास समय है सर, समय अपने लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपनी हॉबीज को फॉलो करने के लिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, कोई शो जाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास उसके लिए समय है? तो आप एक अमीर इंसान है सर। क्या आपके पास एक अच्छी सेहत है? क्या आपको किसी तरह की बीमारी नहीं है? क्या अपने सारे काम अच्छे से कर पाते हैं? तो आप एक अमीर इंसान है। आपके पास एक शांत दिमाग है, इसका मतलब कि हम जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, हम खाली उसी पे फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं, या हम बैठे तो क्लासरूम में हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और लगा है, या हम निकले हैं फील्ड में अपना काम करने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए, और आपका दिमाग लगा है घर में, या शाम को आप घर आ गए हैं और आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है, शांत दिमाग, काम माइंड। तीसरा, क्या आप जब जरूरत है तब ट्रैवल कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, दुनिया देख पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि बाहर ही जाना, आपके पास जब फ्री टाइम है, संडे है, कहीं आप ट्रैकिंग पे जाइए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ पिकनिक पे जाइए, क्या आप कर पा रहे हैं? तो आप बहुत अमीर इंसान हैं। अगर आप सुबह उठते हैं, आराम से वर्कआउट करते हैं और शांति से बैठ के चाय चुस्की लेते हुए चाय पी पाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, और आपको कोई जल्दी नहीं है जीवन में, तो एक आप बहुत ही अमीर इंसान हैं। और छठवां सर, अगर आपके पास एक खूबसूरत फैमिली है, पेरेंट्स है, वाइफ है, बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं जो आपको प्यार करते हैं, हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, तो आप एक अमीर इंसान है सर। तो ये जीवन की लग्जरीज हैं, दुनिया की लग्जरीज के पीछे ना भागें, असली जो लग्जरीज है, रियल लग्जरीज, दीज आर द रियल लग्जरीज ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच सर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों आपने सुना कितने तरह की अमीरी हमारी जिंदगी में हो सकती है। सेल्वम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी बातें सुनी। मुझे उम्मीद है आपके जवाब आपको भी सुनाई दिए होंगे, तो जाहिर सी बात है अंदर ही अंदर कुछ कुछ खलबली मचती है कि चलिए एक बार फिर से मुझे पता चला कि मैं सही ट्रैक पे हूं, सही जा रहा हूं। बहुत खूब सेल्वम, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: Matata. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
1: What a wonderful phrase, Hakuna Matata.
2: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए, सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं।

0: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिबक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो, हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सके कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बालाश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है।
1: मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है।
0: अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाए।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: से पहले।
1: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदे अभी थी, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ

0: beautiful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
1: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों सायरा बानो जब 16 साल की थीं तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एंड रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच। गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ।

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम।
1: धीरे धीरे हर शम्मा बुझी रफ्ता रफ्ता।
0: गजलों की शाम में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है ओम प्रकाश यति जी। बाकी की बातचीत हम ओम प्रकाश जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके कलाम सुनेंगे, उनकी गजलें सुनेंगे। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: धन्यवाद आपका।
0: तो ओम प्रकाश जी प्रोग्राम को शुरू करते हुए बस छोटा सा ही एक सवाल पूछना चाहूंगा पहले कि आपका जन्म स्थान क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, और अभी आप कहाँ रहते हैं थोड़ा उसके बारे में बताइए।
2: जी आपने पूछा जन्म स्थान के बारे में, तो मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी क्षेत्र में एक जिला है बलिया
0: जी,
2: वहाँ मेरा गाँव है छिब्बी, तो वहाँ मेरा जन्म स्थान है। और अपनी सरकारी सेवा में रहा मैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो जगह जगह मेरे स्थानांतरण होते रहे, और रिटायरमेंट के बाद अब मैं यहाँ दिल्ली के पास ये ग्रेटर नोएडा एक जगह है वहां मैं रह रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपनी गजल हमारे सुनने वालों के लिए सुनाए।
2: जी जी जी बिल्कुल, एक गजल के कुछ शेर देखें।
0: जी इरशाद।
2: कि इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, और वक्त कट ही जाएगा अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: वाह।
2: एक शेर है कि क्या जरूरत आ पड़े कब मत पड़ोसी से बिगाड़, क्या जरूरत आ पड़े कब मत पड़ोसी से बिगाड़, और बस वही काम आएगा अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: बहुत खूब।
2: बस वही काम आएगा अच्छा बुरा जैसा भी है। और एक शेर है कि गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही, गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही, बस यही है रास्ता अच्छा बुरा जैसा भी है, बस यही है रास्ता अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: बहुत खूब। शेर
2: कि चाहता हूँ लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते, चाहता हूँ लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते, जिंदगी का तजुर्बा अच्छा बुरा जैसा भी है, जिंदगी का तजुर्बा अच्छा बुरा। धन्यवाद आपका। और एक शेर है राजनीतिक संदर्भों का कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा जैसा भी है। और आखिरी शेर है इस गजल का कि हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे, हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे, है नियति का फैसला, है नियति का फैसला अच्छा बुरा जैसा भी है। अच्छा एक शेर और रह गया था इसका, वो भी सुनाता हूँ।
0: जी जी इरशाद।
2: कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, और है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, इस पे अब क्या सोचना अच्छा बुरा जैसा भी है, वक्त कट ही जाएगा अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल साहब।
2: जी धन्यवाद।
0: सुन के मजा आ गया साहब। जैसा भी है तो मेरा ही, क्या बात है।
2: अच्छा,
0: बहुत खूब
2: जैसा भी है जी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो ओम जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
2: अच्छा ये तो ये गजल मुझे पसंद है, ये वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं।
0: जी
2: तो ये लता मंगेशकर जी की गाई हुई है।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये अगर सुना दें तो फिर।
0: बहुत खूब, बहुत ही खूब। आइए दोस्तों सुनते हैं ओम प्रकाश जी के हुक्म पर ये प्यारी सी गजल लता मंगेशकर जी की गाई हुई।

0: बहुत खूब। कई बार हो जाता है ऐसा कि बचपन में हम किसी को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ही तो होते हैं, अपनी कुछ ज्यादा समझ होती नहीं, लेकिन फिर किस्मत हमें घुमाकर किसी और ले जाती है और
1: वहां फिर आदमी आता है
0: जी, वहां भी हम सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है।
0: जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो ओम प्रकाश सिर, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए एक गजल सुना दें।
1: अच्छा, अच्छी बात है। एक गजल के कुछ शेर और मैं सुनाता हूँ आपको।
0: जी इरशाद।
1: कि तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है, तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है, और मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है।
0: जी,
1: तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है, मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है, और बात करता ही नहीं मुझसे निराशा की कोई, बात करता ही नहीं मुझसे निराशा की कोई, जानता है हर बशर उम्मीद मेरे साथ है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: धन्यवाद जी। जानता है हर बशर उम्मीद मेरे साथ है, और राह भटकाने की कोशिश में अंधेरा है उधर, कि राह भटकाने की कोशिश में अंधेरा है उधर, रोशनी लेकर इधर उम्मीद मेरे साथ है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: रोशनी लेकर इधर उम्मीद मेरे साथ है। और एक शेर देखें खास तौर पे, कि वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, क्यों लगेगा मुझको डर उम्मीद मेरे साथ है।
0: उम्मीद मेरे साथ है।
1: कि वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, क्यों लगेगा मुझको डर उम्मीद मेरे साथ है। और आखिरी शेर है, मक्ता बल्कि कहेंगे इसको, कि दूर से ही हो गई मायूसियां वापस यति, दूर से ही हो गई मायूसियां वापस यति, मिल गई उनको खबर उम्मीद मेरे साथ है, मिल गई उनको खबर उम्मीद मेरे साथ है, तय करूंगा मैं सफर उम्मीद मेरे साथ है, और मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है।
0: बहुत खूब साहब, बहुत खूब। उम्मीद मेरे साथ है, और उम्मीदों के ही सहारे ये पूरी दुनिया चलती है। अगर उम्मीदें ना हो तो इंसान मोटिवेटेड ही नहीं रहता कि किस तरफ आगे बढ़े, किस तरफ काम करें।
1: जी, वो जी, सकारात्मकता इसीलिए जरूरी है। जी
0: जी, उम्मीदें रखना बहुत जरूरी है साहब, सपने देखना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि तभी कुछ पाया भी जाता है, तभी कुछ आविष्कार भी होता है, तभी कुछ इजाद भी होता है। वरना अगर हम उम्मीद ही न रखें, सपना ही ना देखें, तो सब बस यूं ही चलते ही रहेंगे, और क्या। बहुत खूब,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी जी, धन्यवाद आपका।
0: तो सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: अच्छा, ये एक गजल है, ये हमें लगता है गुलाम अली साहब ने गाई है।
0: जी,
1: आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने साहब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महकती हुई गजल है। आइए साहब, सुनते हैं गुलाम अली साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत खूब। ओम प्रकाश सर, आगे बढ़ते हुए बस एक छोटी सी चीज
1: जी,
0: अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में बताइए।
1: बचपन की तो नहीं कहेंगे, मैं कब था, जब 10th 11th में जब था
0: जी,
1: तो वो मुझे याद आता है अपना समय जब एनसीसी का एक जूनियर डिवीजन में मैं वहां पे उसमें था, मैं मेंबर था उसका, सार्जेंट था बल्कि
0: जी।
1: तो वहां से हम लोग एक साइकिल एक्सपेडिशन एक हुआ था, तो बहुत लंबा था, 800 किलोमीटर का था।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो उसमें वो सब यादें बहुत जुड़ी हुई, क्योंकि हम लोग गए तो यहाँ से अपने बलिया से चले बक्सर और आरा, फिर वहां से बिहार शरीफ, दानापुर, पटना, नालंदा यूनिवर्सिटी देखे, फिर वहां से वो आपका कौन सी जगह है, वो नालंदा के पास ही एक जगह जहाँ गर्म पानी के झरने हैं,
0: रांची
1: गया, गए बोध गया, गए और औरंगाबाद, चौसा, बक्सर होते हुए फिर 6 दिन बाद हम लोग वहां से लौटे थे। तो एक कम्युनिटी लिविंग का सबके साथ, और हमारे सीनियर जो हम लोग तो उस समय 20, 18, 19 साल के रहे होंगे, लेकिन हमारे जो मेजर और वो लोग थे 52, 53 साल के, तो वो लोग इतना प्रेरणास्पद लगा उनका कि चाहिए, वो लोग हमको लीड कर रहे थे और हम लोग तो अभी बहुत कम उम्र के थे, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं थी, लेकिन वो सब कर रहे थे। और फिर मैंने उस पर एक बहुत बड़ा संस्मरण भी उन दिनों लिखा था, वो आज का अखबार एक बनारस का आता था तो उसमें छपा भी था वो, तो वो एक चीज मुझे बहुत याद आती है और मुझे बहुत आनंद आता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही होता है ये सवाल पूछने का कि हम अपने बचपन की कुछ यादों को वापस से जिंदा करें, उनको वापस से महसूस करें, तो बस हम दोबारा से जवान हो जाते हैं और कोई बात नहीं।
1: सही सही सही कहा आपने, कहा तो एकदम से कि वो चीज तो हमेशा जहन में रहती है।
0: जी
1: जी।
0: तो सर, अब मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हम लोगों को सुनाएं।
1: अच्छा जी जी, जरूर। पिछले दिनों कुछ जो घटनाएं कुछ हुई तो उनसे प्रभावित होकर के एक शेर हुआ था, और फिर बाद में उसे कुछ और शेर जुड़ते गए तो ये पूरी गजल हो गई
0: जी,
1: और ये पूरे हिंदी के एकदम काफिये हैं। देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ।
0: वाह, हिरशाद।
1: निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी।
0: ओहो।
1: निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी। और शेर है कि हम तमाशाई बने यूं ही अगर तकते रहे, कि हम तमाशाई बने यूं ही अगर तकते रहे, तो अपनी भी अपराध में सहभागिता बन जाएगी।
0: बन जाएगी, क्या बात।
1: अपनी भी अपराध में सहभागिता बन जाएगी। और शेर देखें कि सोच मत उस पर बहुत जो चीज वश में है नहीं, कि सोच मत उस पर बहुत जो चीज वश में है नहीं, एक दिन वरना यही चिंता चिता बन जाएगी
0: जी,
1: एक दिन वरना यही चिंता चिता बन जाएगी। और एक शेर खास तौर पे कि अपनी संतानों की खातिर कुछ भी कर सकती है ये, अपनी संतानों की खातिर कुछ भी कर सकती है ये, जब जरूरत आ पड़ेगी माँ पिता बन जाएगी।
0: ओह, क्या बात है।
1: जब जरूरत आ पड़ेगी माँ पिता बन जाएगी। और एक शेर है कि आदतें अच्छी अगर हम डालते जाएंगे तो, कि आदतें अच्छी अगर हम डालते जाएंगे तो, एक दिन आदर्श जीवन संहिता बन जाएगी।
0: क्या बात है।
1: एक दिन आदर्श जीवन संहिता बन जाएगी। और एक शेर देखें कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, इस तरह तो जिंदगी प्रतियोगिता बन जाएगी।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, इस तरह तो जिंदगी प्रतियोगिता बन जाएगी। और आखिरी शेर गजल का है कि जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, सार्थक अपनी ये रचना धर्मिता बन जाएगी।
0: बहुत खूब।
1: जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, सार्थक अपनी ये रचना धर्मिता बन जाएगी, निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी।
0: ओहो। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही संवेदनशील गजल जो दिल को छू के जाए, और शब्दों का और लफ्जों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल, बहुत ही खूबसूरत गजल साहब।
1: जी जी धन्यवाद।
0: तो अगली कौन सी गजल सुनवा रहे हैं आप, आपके पसंदीदा गजल गायक की?
1: जी जी, एक गजल मुझे पसंद है, ये फिर छिड़ी रात बात फूलों की।
0: जी,
1: ये हमें लगता है लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज है।
0: जी जी जी,
1: तो ये सुनना चाहता हूँ।
0: बहुत खूब जी, जरूर। दोस्तों ये सुनते हैं, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, लता मंगेशकर और तलत अजीज साहब की आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत। ओम प्रकाश साहब आगे बढ़ते हैं और एक बस यूं ही मजेदार सा सवाल, आपको खाने में क्या पसंद है और क्यों?
1: खाने में तो मैं शाकाहारी हूँ
0: जी,
1: शुद्ध शाकाहारी हूँ
0: जी।
1: तो खाने में तो बस क्या है, वही सिंपल अपना दाल रोटी वाले हम लोग हैं और हरी सब्जियां खाते हैं और बस दूध की चीजें, दूध दही पनीर ये सब खाते हैं और तो बस।
0: नहीं नहीं वो तो ठीक हुआ साहब, लेकिन फिर भी जैसे सब्जियों में, हरी सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उनमें से कोई एक सब्जी होगी जो शायद आपको बहुत पसंद होगी।
1: हाँ वो आपने सही कहा, मुझे लौकी और ये तोरी, एक तोरी आती है वो पसंद है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी तरकारियां, सिंपल सी सब्जियां जो शरीर के लिए हल्की भी हैं और फायदेमंद भी। बहुत खूब,
1: अच्छा बहुत।
0: जैसे मैं जस्ट बताना चाहूं तो सब्जियों में एक कमल डंडी आती है जिसको भिस भी कहते हैं।
1: उसको हम कहां गए थे, जम्मू में मेरी बेटी की शादी हुई है तो उनके यहाँ बहुत, वो तो हर डिश में वो जरूर रहता है उनके यहाँ, वो नदरू बोलते हैं लोग उसको
0: जी,
1: कश्मीरी में
0: जी।
1: हाँ हमारे यहाँ का कमल ककड़ी ही बोलते हैं।
0: जी जी जी जी
1: अच्छी लगती है,
0: बहुत बहुत अच्छी लगती है, मतलब सब्जियों में अगर बात करें तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसको कई तरह की डिश बनाते हैं
0: जी, वो गीली भी बनती है सूखी भी बनती है। बहुत
1: हाँ,
0: बहुत बेहतरीन। तो ओम प्रकाश साहब आगे बढ़ते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुनाए।
1: अच्छा एक गजल और सुनाऊं जी?
0: जी
1: तो एक गजल के कुछ शेर देखिए।
0: इरशाद इरशाद,
1: ये गजल ये हमारे इसके यूनिवर्सिटी है वहाँ की जलगांव जो उत्तर महाराष्ट्र की
0: जी,
1: वहाँ के पाठ्यक्रम में पढ़ाई भी जा रही है, मेरी 20 गजलें हैं वहाँ एमए के सेकेंड ईयर में, तो उसमें भी ये गजल है कि हम भी खुश थे जब वो जीते, लेना एक न देना दो
0: जी,
1: और भाग रहे थे तुम भी पीछे, लेना एक न देना दो।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: हम भी खुश थे जब वो जीते, लेना एक न देना दो, भाग रहे थे तुम भी पीछे, लेना एक न देना दो, और उनको तो मंदिर मस्जिद से वोट की खेती करनी थी।
0: ओहो
1: उनको तो मंदिर मस्जिद से वोट की खेती करनी थी, हम आपस में लड़ना सीखे, लेना एक न देना दो, हम आपस में लड़ना सीखे, लेना एक न देना दो। और शेर की भीड़ हजारों की जुटने पर नारों की भी होड़ लगी, भीड़ हजारों की जुटने पर नारों की भी होड़ लगी, तो ननकू और जुम्मन भी चीखे, लेना एक न देना दो। भीड़ हजारों की जुटने पर नारों की भी होड़ लगी, ननकू और जुम्मन भी चीखे, लेना एक न देना दो। और एक शेर है कि पश्चिम वाले जीना हमसे सीख रहे हैं लेकिन हम, पश्चिम वाले जीना हमसे सीख रहे हैं लेकिन हम सीखे उनके तौर तरीके, लेना एक न देना दो, सीखे उनके तौर तरीके, लेना एक न देना दो। और आखिरी शेर है, बेटा बोला राय सभी को क्यों देते रहते हैं आप, बेटा बोला राय सभी को क्यों देते रहते हैं आप, खाली पीली बैठे बैठे, लेना एक न देना दो, खाली पीली बैठे बैठे, लेना एक न देना दो। और

0: हम भी खुश थे जब वो जीते, लेना एक न देना दो, भाग रहे थे तुम भी पीछे, लेना एक न देना दो।
1: बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी गजल, बहुत ही हल्की फुल्की, लेकिन वही लेना एक न देना दो, और इंसान बस परेशान ही रहता है इस दुनिया में।
0: जी, बहुत खूब, छोटी छोटी बातें हैं।
1: हाँ हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बड़ी ही प्यारी सी गजल, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद आपका,
1: बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो अब कौन सी गजल सुनवाना चाहेंगे सर, अपने पसंदीदा गजल गायक की?
0: अच्छा, ये मुझे पसंद है, मुकेश जी मुझे पसंद है
1: जी,
0: तो उनकी एक गजल है, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों सुनते हैं मुकेश जी की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

हिंदुस्तानी संगीत में और बॉलीवुड की दुनिया में सबसे बेहतरीन कलाकार मन्ना डे जी, जिनकी क्लासिकल सिंगिंग और गजल सिंगिंग बेहद मशहूर थी। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस सुनाई दे सकता है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमें दीवाना बना सकती है।

0: ओम प्रकाश साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आप हमारे मेहमान बनकर इस प्रोग्राम में आए, आपकी गजलें हमने सुनी, आपसे बातचीत हमने करी, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस हमारे समाज के लिए, हमारे लिए काम आएगा। हम इस चीज का सख्त ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी समीर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत सी चीजें आप इतनी सामान्य पूछी जो काफी कुछ मुझे पीछे अपने उसमें ले गई, और मुझे अच्छा लगा
0: जी
1: ये बातें मुझे फिर याद करने का एक अवसर दिया। और मेरे पसंद के गीत आपने सुनवाए, ये जान करके और ये सुन करके भी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद, आभार आपका।
2: बरसों में मरासम बनते हैं, लम्हों में भला क्या टूटेंगे।
0: दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। और श्रोता साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम तीन तीन कंपोनेंटों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम कि हमारे किसान साथी, चूंकि मशरूम की खेती करना बड़ा मुश्किल बात तो नहीं है क्योंकि सरकार इसके लिए ट्रेनिंग्स देती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन मशरूम की खेती आखिरकार कैसे की जाती है इस पर हम खास बातचीत करेंगे। साथ साथ में हम सीप की जो खेती रहती है यानी मोतियों की खेती रहती है, अभी आपने सुना होगा कि मोतियों की खेती कैसी होती होगी, उस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ में हम सफल किसान की कहानी हम लेकर आएंगे और साथ में एक और कंपोनेंट जोड़ना चाहेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कि केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना आखिरकार क्या है, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए किस तरीके की योजना है, कैसे हमारे किसान साथी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, तीनों चारों कंपोनेंटों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं अपने किसान साथियों से, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बरसात का मौसम जैसे ही आए और हम अपनी फसल लगाना स्टार्ट कर दें, लेकिन उन किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसी भी हम कार्य को करते हैं उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस कार्य को करना होगा, इस कार्य को करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसको किया जाता है, ये सारी बातचीत हम ध्यान में रखते हैं, एक सोचते हैं कि कैसे खेती की जाती है, कैसे इस काम को किया जाता है। ऐसे ही खेती की बात आती है कि हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि आगे चलकर हम भविष्य में या फिर आगे चलकर

0: मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट की तैयारी करने की। मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कंपोस्ट की तैयारी, जिसमें बीजों को बोया जाता है। भारत में ज्यादातर कंपोस्ट की तैयारी में पुआल का उपयोग किया जाता है। पुआल बाजार से काफी कम कीमत पर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब बारी है पुआल को कंपोस्ट में बदलने की। शुरुआती दौर में 5 से 10 किलो तक पुआल से काम चल जाएगा। सबसे पहले भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ध्यान दे, टुकड़ा न बहुत छोटा न बहुत बड़ा हो। आधा इंच का पुआल आदर्श माना जाता है। अब भूसे को किसी टब अथवा टंकी में पानी से भर रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दे। ध्यान दे, पुआल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाने के लिए आप सॉल्युबल लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी खाद्य भंडार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रात भर कंपोस्ट को भिगोने के बाद अब इस कंपोस्ट को निकालकर जमीन पर सूखने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल न ज्यादा गीला न ही ज्यादा सूखा रहे। 2 से 3 घंटे बाद पुआल को हाथ से दबाकर चेक कर लें। यदि काफी दबाने पर थोड़ा पानी निकल रहा है तो ये कंपोस्ट आपके लिए आदर्श है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाई गई क्यारियों में अब आप इस कंपोस्ट को फैला दें एवं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मशरूम के बीजों को बो दें। अब दोबारा बीजों के ऊपर एक परत कंपोस्ट की दें तथा बीज रोप दें। इस प्रकार परत दर परत कंपोस्ट के बीच में बीज रोप कर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे, कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री तक बना रहे। आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहें। मशरूम की फसल को कीट पतंगों एवं अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करें। ध्यान रहे, कमरा में किसी तरह की रोशनी ना पहुंचने पाए। फसल होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। कोशिश करें बीच बीच में आवश्यक नमी एवं कमरे का तापमान चेक करते रहें। शुरुआती दौर में 30 किलोग्राम भीगे पुआल से 5 किलो तक फ्रेश मशरूम उगाया जा सकता है। मशरूम के भंडारण एवं वितरण में ज्यादा समय ना लगाएं। आप प्लास्टिक में 100, 250, 500 ग्राम अथवा 1 किलो का पैक बना इसे या तो सीधा मार्केट में उतार दें अथवा किसी सब्जी वाले के हाथों अपनी फसल बेच दें। जरा इन बातों पर भी ध्यान दें। मशरूम के बीज को आवश्यक नमी पहुंचाने के लिए हर 2 से 3 दिनों के बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। रूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कंपोस्ट को छूने अथवा मशरूम के बीजों के संपर्क से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं कोशिश करें कमरे में जूते चप्पल इत्यादि पहनकर प्रवेश न करें। भारत में आप इन जगहों से मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पूसा, दिल्ली। राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। ओडिशा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, R&D सेंटर, मुरथल, सोनीपत। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन, उमरोई रोड, बोरापानी, मेघालय। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ICAR, चंपाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने सुना इस महत्वपूर्ण जानकारी को और जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, चूंकि पथरीला इलाका है तो क्या कर सकते हैं, तो मशरूम की खेती भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मशरूम की खेती कर सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और इससे कितना लाभ होता है।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशु पालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 महाबास सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाए, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
3: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है। तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कब बारिश हो, और बारिश होने के बाद वो किसान साथी हमारे अगली फसल की तैयारी करेंगे। लेकिन साथियों, हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, इससे पहले कुछ हमें अपनी जानकारी जुटाना चाहिए कि कौन बीज अगली फसल में हमें बोना है। साथ साथ में हमें मेड़बंधान पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है। ऐसे में समतलीकरण अपनी जमीन को कर लेना चाहिए, अपनी खेती को कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पानी उस खेत में नहीं रुकेगा तब तक नमी नहीं बनेगी और साथ साथ में पैदावार भी आपकी कम होगी। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जिस पथरीला चूंकि इलाका है, यहाँ पर पानी कितने सारे देते हैं तब पानी रुकता ही नहीं उसमें, तो कैसे अपने जो ढलान वाले खेत हैं, उबड़ खाबड़ वाले खेत हैं, उसको किस तरीके से उपजाऊ हम बना सकते हैं, समतलीकरण कर सकते हैं, चारों ओर मेड़बंधान कर सकते हैं, ये अभी खाली समय में हमारे किसान साथी काम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो विशेष तौर पर उनको ध्यान देने वाली हैं। और यदि आपको लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जो झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं या फिर KBK बना हुआ है, वहां पर जाकर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि हम कौन से बीज की तैयारी अभी से कर लें, उपचार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम खेती को एक आधुनिक पद्धति से अपनी खेती को करना चाहिए, कैसे वैज्ञानिक ढंग से हमें खेती करना चाहिए जिससे हमारी लागत कम लगे और उत्पादन हमारा अच्छा हो। तो हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों बताते रहते हैं और हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे फसल जो रहती है उस पर जो हम जो उत्पादन करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जो फसल हम उत्पादन करके हम जो बेचते हैं, उसमें किस तरीके से GI टैग लगाया जाता है, इस पर विस्तार से आज जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। कौन सा कानून है, कैसे लगता है और इससे हमारे किसान साथियों को किस तरीके से लाभ हो सकता है, सारी जानकारी इस चर्चा में हम आप सुनेंगे। तो देर नहीं करते हैं, आपको सीधा इस चर्चा में ले चलते हैं और उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से GI टैगिंग हमारे भारत में की जाती है, कौन कौन से फसलों पर GI टैगिंग की जाती है और कैसे इसके GI टैगिंग का हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनों रेडियो आपनी बातें।
2: GI टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक में वहाँ की स्थानीय खूबियां मौजूद होती हैं। दरअसल GI टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। GI टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बाकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। GI टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ GI टैग का सफर करीब करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं, जिन्हें GI टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहार चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है, जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
3: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी GI टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में, थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। GI टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले GI यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो GI एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहां अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगनपल्ली आम है, अल्फेंसो आम है, चाय है, और इस तरह शाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
3: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी GI टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये GI टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
5: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
3: जी,
5: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी GI रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए। यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकॉग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रीब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं
3: जी।
5: क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं
6: जी।
5: और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है
6: जी। तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है, हमारे देश से बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
7: देखिए अदिति,

0: का अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करे
1: जी।
0: और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान बासमती चावल का जीआई टैग जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया चेन्नई जो रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
1: जी।
0: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर जहां जहां हमारा हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं
1: बिल्कुल
0: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
1: जी।
0: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले उसका लाभ मिले क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
1: देखो तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है।
0: देखिए जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है जीआई टैग का जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है तभी उसको जीआई टैग मिलेगा और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
1: बिल्कुल इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे डॉक्टर बजाज आपके पास हम यहां पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा क्या प्रक्रिया रहती है उसकी।
2: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं
1: जी।
2: और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा एक प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है भाई दूसरे को तुम नाजायज हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूं और इससे मुझे जो है एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में एक यहीं पर ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर संस्था कर सकती है चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
1: बिल्कुल तो आपने कहा कि एक संस्था यहां पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होता है राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है।
3: मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ

0: क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में। उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 218 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वर्ल्ड वाइड से सिलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वो विमेन है। तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी एक जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदे चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
1: जी।
2: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
1: जी।
2: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था। आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं। और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है, या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता। और हमारे जो किसान है, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है, वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा। और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
1: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहाँ पर तैयार किया है उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहाँ पर GI टैगिंग मिलती है तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान है या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
3: सभी को फायदा मिलता है
1: जी।
3: जब GI टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
1: जी।
3: अब बासमती GI टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका सबको लाभ मिल रहा है। ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का लाभ रह गया। जो अपने उस क्षेत्र को जो कि आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं उस आइडेंटिफाइड क्षेत्र से अगर वो अपना उत्पाद लेकर आता है तो वो उसका वही उत्पाद है और उसको वो उसका जो प्रीमियम है वो क्लेम कर सकते हैं। खाली बासमती की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत से, जैसा मैंने कहा अभी दार्जिलिंग चाय की बात करी, आम है, हमारे अंगूर हैं, शाही लीची है, और भी बहुत से ऐसे उत्पाद और प्रोसेस फूड हैं जैसे रसगुल्ला है, बहुत से ऐसे खास जो उत्पाद हैं हर क्षेत्र के जुड़े हुए, तो उनके जो उत्पाद हैं जो जो उन उत्पादों को उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सदियों से उसका उत्पादन कर रहे हैं उनको लाभ मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बेचने में आसानी है क्योंकि खरीददार को पता है कि ये विशेष है, मैं जाता हूँ वहां जाएंगे। अब छोटी सी बात समझिए, आप भी कहीं जाते हैं बोले फला के फला खाने की चीज बड़ी मशहूर है, तो आप चाहे थोड़ी दूर ही क्यों ना जाना चाहे वहां जाते हैं और वहां जाके एक जरूर खाते हैं और बार बार जाते हैं। इसी तरह ये या जाते हैं जब कभी आप किसी राज्य में जा रहे हैं किसी जगह पे जाते हैं तो बोलते हैं कि वहां की एक खास चीज है, जैसे मैंने कहा बनारस की साड़ियां बहुत मशहूर हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं जरूर वहां खरीदूं और उसका जो है वो मुझे भी लाभ मिले।
1: बिल्कुल, कश्मीर जा रहे हैं तो शॉल लेना बहुत जरूरी है,
3: केसर खरीदते
1: हैं,
3: केसर खरीदेंगे वहां का,
1: तो ये आप दक्षिण में जा रहे हैं तो यहाँ का सिल्क बहुत मशहूर है। बिल्कुल,
3: तो बेचना आसान है और दूसरा ये कि उसका फिर उसको प्रीमियम भी मिलता है क्योंकि खरीददार को भी है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो एक विशेष चीज है, ये आम चीज नहीं है जो मैं खरीद रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ इसी क्षेत्र से, इसी व्यक्ति विशेष से, इसी जो है वो एरिया से मिलती है, तो इसलिए एक उसको भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ एक यूनिक प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूँ।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर बजाज आप कह रहे हैं कि एक प्रीमियम मिलता है कस्टोडियन को, तो ये प्रीमियम कौन देता है और इससे फायदा क्या होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: खरीदार देता है ना प्रीमियम, वो खरीदार जो है वो जाता है, उसको एक तो उसको पता है कि धान, जब उदाहरण जब आपने दिया बासमती का ही, तो बासमती के जो खरीदार है वो जो रेट देगा और दूसरे जो धान है उसमें फर्क तो रहता ही है
1: जी।
3: तो बासमती का सबसे महंगा चावल, बहुत सी वजह है, उनमें से एक वजह तो ये भी है कि वो GI टैग है और दुनिया भर में बासमती को हम ठीक दाम पर बेचते हैं, लोग इसको जो है एक्सपोर्ट में हमें प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं जिसका ऑफकोर्स किसानों को लाभ भी मिलता है, तो इसी वजह से क्योंकि ये GI टैग है। और भी बहुत सी बातें हैं उसकी विशेषता है, लेकिन विशेषता ये भी है क्योंकि ये GI टैग है, एक खास भौगोलिक पहचान है इसकी।
1: बिल्कुल, GI टैगिंग मिल गई है तो विश्व भर में उसकी पहचान हो गई है, विश्व की नहीं अपने देश की बात कर ले तो पहचान हो गई है, जब भी कभी वहां उस क्षेत्र में जाते हैं तो हम उसका स्वाद या फिर उस चीज को लेना जरूर पसंद करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हम कोई भी उत्पाद यहां पर तैयार कर रहे हैं तो उसकी GI टैगिंग जरूर करवा लें। फायदे अनेक हैं, हर एक को इससे फायदा मिल सकता है, और किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है GI टैगिंग और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या किसी तरह की कोई समस्या भी आती है, इस पर भी हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटला 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: कृषि उत्पादों की भौगोलिक पहचान के बारे में। जी हाँ, जीआई टैगिंग पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। क्या होती है ये, किस तरह की इसकी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में तो हमने जान लिया और इससे फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी विशेषज्ञों ने हमें विस्तार से बताया है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में जाते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कश्मीरी कार्पेट्स, अब कश्मीरी कार्पेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कार्पेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कार्पेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहां किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कार्पेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कार्पेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआईज एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
0: और तो जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, अपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
1: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है, जिसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
0: जी,
1: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशन आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहां पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है उसका एग्जामिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे बासमती का एग्जाम्पल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जाम्पल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
0: जी।
1: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
0: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहां पर समझाया है राजेंद्र जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि अब अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
2: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
0: जी,
2: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़े। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहां लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
0: जी।
2: यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
0: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
3: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा अदिति, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
0: जी।
3: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सकें, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में, साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक एफपीओ बनाकर, एफपीसीज बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
0: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है। ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूव हो?
1: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कश्मीरी कारपेट्स में क्यूआर कोडिंग एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं। ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में। एक यूएस की कंपनी राइसटेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम यूएस में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें एपीडा और सीएसआईआर का बहुत रोल था। उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की यूएसपीटीओ के सामने, और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस, ये यहीं प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, यूएस कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया। तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
0: तो बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहां पर होता है, लेकिन यहां पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहां पर फिर से एक बार बात कर रहे थे, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे। हम एपिडा की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
3: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके, और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3,00,000 करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है, और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
0: बिल्कुल, बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
3: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए, और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है, तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में, और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है, और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो, और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
0: बिल्कुल, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें

0: बिल्कुल ध्यान देना है, निर्यात लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो GI टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
1: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको GI टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा के और उनको एक बड़ा बाजार दिया जा सकता है। और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं और उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके और जो हमारी इस तरह की जो छोटी छोटी प्रोडक्ट है उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन GI करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको GI के लिए आगे लेकर आए ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
0: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो GI टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो GI टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब हमारे किसानों को ये समझने की जरूरत है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपडी बातें।
0: GI टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहां पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि GI टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहां पर GI टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहां पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
3: वही प्रक्रिया
0: जी,
3: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका GI टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो GI टैग हुआ ही नहीं है और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं, हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो जीआई टैग की आवश्यकता है। और जब जीआई टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष जीआई उत्पाद है।
0: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
4: बिल्कुल, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
0: जी।
4: उसमें जो जीआई ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि जीआई प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए जीआई प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है
0: जी।
4: बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही है, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के जीआई का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो हमारा जीआई एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर जीआई ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट जो हैं काफी फोर्थराइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शन फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम जीआई लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है
0: जी। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, जीआई टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
1: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
0: जी।
1: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
0: जी,
1: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी
0: जी।
1: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
0: जी,
1: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
0: जी,
1: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ
0: जी,
1: और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
0: वो खरीदेगा ही और लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा?
4: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए, क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो है हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में। अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
0: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखती है। गुणवत्ता अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पे सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका?
3: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया। क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था, और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं। प्रीमियम मिलता है, आय में वृद्धि तो अवश्य होती है, इसीलिए इसका बड़ा प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो जीआई टैगिंग देखिए कुल मिलाकर काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, आय में वृद्धि, एक विशेष पहचान, और अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो और भी ज्यादा हमारे लिए सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए जीआई टैगिंग की ओर आप अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं, हमारी सरकार की ओर से भी यहां पर आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरी परिचर्चा, कितनी बड़ी परिचर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हमने सुनी है और जाने हैं कि किस तरीके से जीआई टैगिंग की जाती है और किस तरीके की फसलों में जीआई टैगिंग की जाती है, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें जीआई टैगिंग, और किस तरीके से कानून क्या कहता है, सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रस्तुत की है। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इसका लाभ जरूर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हम जीआई टैगिंग से लाभ ले सकते हैं, आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये सारी बातें हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं वो छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे जो उनके लिए बेहद जरूरी है। तो यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे किस्ती विस्तार अधिकारी साथ साथ में केबीके में जाकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि हम सब जानते हैं आज के कलाकार मंच है नए गायकों का, नए गायिकाओं का, नए टैलेंट का। और आज हमारे साथ जो टैलेंट हैं उनका नाम है रविका जी। बाकी की बातचीत हम रविका जी से करेंगे। रविका जी अपने बारे में बताएंगी और उनके गीत हम सुनेंगे। रविका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच। मैं रविका एक गायिका और संगीत प्रेमी हूँ और मैं अपनी सभी संगीत के जरिए लोगों को, दिलों को जुड़ने की कोशिश करती हूँ और अपने शो जज्बात के जरिए भावनाओं को सुरों में पिरोने का प्रयास करती हूँ।
0: अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत खूब। तो रविका जी हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ मैं और बचपन में संगीत सीखा नहीं, शौक रहा हमेशा से
0: जी।
1: लेकिन तब थोड़ा बहुत गाया, शादी जल्दी हो गई, फैमिली जल्दी हो गई, लेकिन ड्यूरिंग कोविड मैंने फिर से शुरुआत करी एंड उसके बाद मैंने अपने कुछ पंजाबी एल्बम्स लॉन्च किए हैं और एवरी वेनेसडे आई हैव अ शो कॉल्ड जज्बात ऑन माय फेसबुक पेज जहां पर मैं 3 घंटे लोगों की पसंद के गाने गाती हूं। साथ ही साथ मैं अभी कुछ और एल्बम्स में काम कर रही हूं। सो दिस इज माय लाइफ अबाउट म्यूजिक।
0: वाओ, अमेजिंग। दोस्तों आपने सुना रविका जी फेसबुक पेज पर, उनके ही फेसबुक पेज पर 3 घंटे के लिए रियाज करती हैं, लोगों के जो फरमाइशें होती हैं वो सॉन्ग्स प्ले करती हैं, गाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को रविका जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब। चलिए रविका जी, आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में बहुत से सपने थे। शुरुआत से गाने का बहुत शौक था, एक्टिंग का बहुत शौक था, और सबसे ज्यादा डांसिंग का बहुत शौक था। ये सभी कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ सपने लेकर जिंदगी में, स्कूल में, और परफॉर्मेंस करी, बहुत सारे अवार्ड स्कूल में भी जीते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन के सपने शादी तक आकर फिर कहीं ना कहीं थम जाते हैं।
0: ओके। एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम रविका जी, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बचपन के जो सपने थे वो आपने हमेशा अपने जहन में संजो के रखे, और जिस वक्त भी आपको मौका मिला आपने अपनी प्रतिभा को एंजॉय करना शुरू किया, आपने गाना शुरू किया। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत रविका जी के आवाज में।

0: रविका जी, जैसे हम लोग अभी बचपन में ही हैं, आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: मेरी फेवरेट टीचर मेरी केमिस्ट्री टीचर थी, मिसेस मेनन। वो इसलिए फेवरेट थी कि मुझे उनके बात करने का तरीका, सबसे ज्यादा उनका साड़ी पहनने का तरीका, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, और मैं हमेशा सोचती थी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो ना ही सिर्फ उनकी पढ़ाई, पर सिर्फ उनको देख देख कर आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय सारीज कि आज तक साड़ी मेरा पहला ही प्यार है। और कभी भी अगर मुझसे कोई फेवरेट आउटफिट पूछे तो अभी भी मैं वही टीचर को याद करके साड़ी ही बोलती हूँ।
0: क्या बात है, दैट्स सो क्यूट दैट यू प्रैक्टिकली लाइक्ड वन एस्पेक्ट ऑफ योर टीचर।
1: यस, या

0: बहुत खूब रविका जी, आपको और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छी तरह से बयान करते हैं, परिभाषित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं?
1: वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे ज्यादा वर्ड जो मुझे डिस्क्राइब करेगा वो है संगीत, म्यूजिक, गाना सबसे ज्यादा, क्योंकि आई ड्रिंक, स्लीप, ईट ओनली म्यूजिक.
0: वाओ,
1: हर वक्त मुझे मतलब मैं गाने से ही रिलेटेड अपनी जिंदगी

0: में, किसी भी सिचुएशन में संगीत मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है. उससे
1: बहुत
0: भी कहीं गुना ज्यादा है भावनाएं, इमोशंस,
1: ओके
0: लॉट्स ऑफ इमोशंस. इसलिए जो मैंने अपना ऑनलाइन शो भी रखा है उसका नाम भी जज्बात रखा है. एंड
1: जी
0: आई डू 30 मिनट्स टॉक एवरी डे ऑन फेसबुक. उसका नाम मैंने दिल से रखा है. तो दिस
1: ओके
0: इटसेल्फ शोज कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. इन एनी थिंग विच इज रिलेटेड टू इमोशंस, भावनाएं, जहां पर हम अपने इमोशंस को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाले का भी सुन सकते हैं, मीन्स अ लॉट टू मी. एंड
1: वेरी
0: द
1: नाइस
0: थर्ड यू कैन से इज समर्पण. गेट समर्पित टू वॉट एवर यू आर डूइंग. बी यू. आप 100% हर उस चीज में समर्पित रहो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपकी जिंदगी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका पैशन क्यों ना हो. समर्पित होना बहुत जरूरी है. नेवर बी कि आई एम द बेस्ट और बस इसके आगे कुछ नहीं. अपने आप को समर्पित कर दीजिए खुद ब खुद जिंदगी में सब कुछ, एवरीथिंग. सो संगीत, भावनाएं और समर्पण, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है.
1: वाह, क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत खूब. संगीत,
0: थैंक यू.
1: समर्पण और भावनाएं. जाहिर सी बात है, भावनाएं हमें, हम इंसानों को जानवरों से इसीलिए अलग करती हैं कि हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. भावनाएं बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं हमारी जिंदगी के लिए. आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा.
0: थैंक यू.
1: तो चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं रविका जी की ही आवाज में.

0: रविका जी, चलिए लेट्स हैव सम फन आराम से। आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाना बनाने की कोई भी चीज क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: ओके, द फर्स्ट वाज ऑब्वियसली दाल चावल, बिकॉज उससे ज्यादा इजी कोई चीज होती नहीं है। एंड इमीडिएटली उसी दिन मैंने मैगी भी बनाई थी।
0: ओके,
1: तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने मैगी को इतना ज्यादा क्यों पका दिया, या पानी ज्यादा डाल दिया, या वो 2 मिनट्स के बदले में पता नहीं कितने मिनट उसको पका दिया। एंड द दाल वॉज प्रिटी गुड, क्योंकि मम्मा ने तड़का लगाना अच्छे से सिखाया था। दैट वॉज प्रिटी सिंपल। सो जितना मुझे याद है आई थिंक यही था।
0: सिंपल इज ऑलवेज ऑलवेज ब्यूटिफुल। दाल चावल वैसे भी बहुत बहुत सारे लोगों की, रादर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की पसंद है, लेकिन पहली बार फिर भी उसे सक्सेसफुली बना लेना अपने आप में एक अकॉम्प्लिशमेंट होता ही है।
1: बिकॉज डर लगता है ना कि पता नहीं ज्यादा पड़ रहा है या पानी ज्यादा पड़ रहा है।
0: करेक्ट करेक्ट। और जहां तक मैगी की बात करें, तो मैगी तो हमारे देश का सबसे फेवरेट फूड काइंड ऑफ फूड है, मतलब खास करके जो हॉस्टल्स में रहते हैं बच्चे, उनके लिए तो वो कहते हैं ना, वो जन्म बूटी है, जीवन बूटी है, कि उनके लिए तो एक वरदान की तरह है वो।
1: एंड इट इज टेस्टी।
0: यस श्योर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो दोस्तों आपने सुना, आइए फिर एक गीत भी हो जाए रविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत ही प्यारी गायकी। रविका जी, थोड़ा सा और बेहतर जानने के लिए आपको आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी हॉबीज क्या हैं? गाना गाने के अलावा बताइएगा।
1: ओके, गाने के अलावा मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। आई लव टू ड्राइव और मैं घंटों तक ड्राइव कर सकती हूँ बिना थके, बिकॉज सचमुच मुझे बहुत मजा आता है। ऑब्वियसली उसमें म्यूजिक साथ में लगी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना बहुत बहुत पसंद है। मतलब आप जितना चाहे मुझे घुमा लीजिए, मैं कभी भी बोर नहीं होती। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई लव टू मेक गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो मेरी वेवलेंथ के साथ मैच हो सके, फ्रेंड्स जिनके साथ में, मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी जल्दी दोस्त बना लेती हूँ जिंदगी में। सो आई थिंक दीज आर माई हॉबीज।
0: ऑलराइट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी ड्राइविंग हॉबी आपके ट्रैवल की हॉबी के साथ मैच करती है, तो इट्स अ सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट विच एक्चुअली टेक्स यू टू प्लेसेस, और बहुत बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है हॉबी की आपको बहुत बहुत सारे लोगों से मिलना पसंद है।
1: yes,
0: दोस्ती करना पसंद है। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर हो जाए एक और प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब रविका जी, कई बार ऐसा होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते चलाते कुछ ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है जो जिनके मैनरिज्म में, जिनके व्यवहार में कुछ ऐसी बात होती है जिससे कि हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा सारा का सारा दिन भी खराब होने की कगार पे आ जाता है। तो लोगों के मैनरिज्म में ऐसी क्या चीज मिलती है आपको जो आपको डिस्टर्ब कर देती हो?
1: सबसे ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती है हमसे कि हमारे बेस्ट करने के बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं और उस वक्त जो उनका बिहेवियर या उनके बात करने का तरीका, दैट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और हम लोग हमेशा जिंदगी में परफेक्ट नहीं हो सकते, सो जो लोग हमेशा हमारे में परफेक्ट एटीट्यूड ढूंढते हैं वहां पर बहुत परेशानी आ जाती है। बिकॉज लाइफ इज सिंपल, नॉट एवरीबॉडी इज परफेक्ट, लेकिन लोगों को मैच करने में काफी वक्त चला जाता है। दैट इज विच इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट मी।
0: वैसे भी रविका जी ये बात कही गई है, यू कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी ऑन दिस अर्थ, सबको तो आप खुश कर भी नहीं सकते।
1: जी जी बिल्कुल।
0: दूसरी बात ये भी है कि उम्मीदें इस दुनिया की, मेरा पर्सनल मानना यह है कि उम्मीदें इस दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। जब हम उम्मीद करना शुरू करते हैं तो हम पाने और खोने में लग जाते हैं और फिर फिर दुख आना शुरू हो जाता है।
1: बस यही एक परेशानी है कि उम्मीदें कभी कभी बहुत ज्यादा लोग लगा लेते हैं,
0: बस,
1: और जरूरी नहीं है कि हम पूरी कर पाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं।
0: सही कहा आपने, बहुत खूब। चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रविका जी की आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। रविका जी, आपकी जिंदगी में, आज तक की जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि, अकॉम्प्लिशमेंट क्या रहा है?
1: देखिए, कहने के लिए मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते, चाहे वो सिंगिंग के लिए हो। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो जब हम लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दैट इज द मोस्ट प्राउड मोमेंट, बट दैट इज अ नेचुरल फैक्ट ऑफ लाइफ। बट अगर हम बात कर रहे हैं एज माय करियर, अदर देन हैविंग सो मेनी अवार्ड्स, एक चीज जो मुझे आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपलब्धि देती है, दैट इज माय जज्बात शो विच आई एम डूइंग ऑन फेसबुक। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हर बुधवार मैं 5,000 से 10,000, कभी कभी 50,000 लोगों को एक साथ में 3 घंटे उनकी पसंद के गाने गाती हूँ, और उसके बावजूद भी रात के 12:30 बजे तक लोग मेरा पूरी तरह से साथ देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पा रही हूँ उनकी पसंद के गीत गाकर, या उन्हें उस दुनिया में ले जाकर जो शायद वो भूल चुके हैं। आई लव टू टेक वेरी ओल्ड सॉन्ग्स जो काफी बुजुर्ग सुनते हैं। ऑल्सो आई गो टू ओल्ड एज होम्स जहाँ पर मैं उनके लिए गाती हूँ। तो ये चीजें मुझे बहुत बहुत खुशी देती है, अदर देन ऑल द यू नो जो अवार्ड्स वगैरह, तो ऑफ कोर्स वो प्राउड मोमेंट्स है, बट इससे ज्यादा बड़ा अवार्ड नहीं है जब लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया मैम, बिल्कुल ठीक फरमाया। जब आप सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करते हैं, जैसे आपने कहा आप ओल्ड एज होम में जाकर उन लोगों के लिए जब गाती हैं, तो जाहिर से बात है उनके जो जज्बात आपके लिए उमड़ते होंगे, उनके आशीर्वाद आपके लिए आते होंगे, या जो खुशी उन्हें मिलती होगी, वो सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। यूं कहने को तो उसकी कोई कीमत नहीं है आज की इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, कोई कीमत नहीं है उनकी। लेकिन
1: ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में जब इमोशंस जुड़ते हैं, जिसको मैं जज्बात बोलती हूँ, मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती इन टुडेज वर्ल्ड।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये महसूस करने वाली बात है मैम।
1: जी जी जी,
0: दोस्तों महसूस कीजिए इस चीज को, और सुनिए एक प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं रविका जी। क्या आप सपनों में विश्वास रखती हैं, रात को देखने वाले सपने?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर सपने ना हो, उम्मीदें ना हो, तो हम मुकाम पाने की कोशिश नहीं करते, और अगर दिल से मेहनत की जाए तो सपने भी सच होते हैं। मैं आज भी अपने हर सपने में सपने भी देखती हूँ और उन सपनों पर मेहनत भी करती हूँ, बिकॉज सपने देखेंगे तो कुछ आगे जिंदगी में पाने की कोशिश करेंगे।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। हमारे देश के ही पूर्व प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भी कह गए कि सपने देखते रहिए, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, हम पूरे कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत खूब। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: खूब। रविका जी, आपके जीवन में जैसे मैंने ऊपर पूछा था लेकिन उससे थोड़ा सा अलग ये है कि आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा, गिफ्ट आज तक क्या मिला है और किसने दिया है?
1: कि अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजें बोलेंगे तो वैसे तो बहुत बहुत ज्यादा मिली है, बिकॉज दैट इज लाइफ राइट। बट ऑफ कोर्स जो फर्स्ट नाइट पे मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग दी थी, उसकी वैल्यू मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा है। नॉट बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द रिंग, बिकॉज वो मोमेंट जिंदगी का सबसे प्यारा मोमेंट था। एंड अगर आप नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों की बातें करेंगे तो जो इतना प्यारा सा मेरा परिवार है, उनका सेल्फलेस लव, और आज की तारीख में फेसबुक या संगीत की दुनिया में या जहां पर मैं गाने गा रही हूँ, उनका जो सेल्फलेस ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो और चाहे वो नॉन मटेरियलिस्टिक।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत क्यूट, बड़ी ही प्यारी बात। दोनों ही चीजें आपने मुझे बताई कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का तोहफा और जज्बातों के जिंदगी में, जज्बातों के दुनिया का तोहफा क्या क्या है, वो आपने हमें बताया। अमेजिंग। तो दोस्तों, एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: रविका जी, अब हम अपने प्रोग्राम के उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए और नए सिंगर्स के लिए, अब कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: सबसे ज्यादा तो फर्स्ट आई विल से थैंक्स टू यू, टू द होल टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सेकेंडली, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे लिए कि सभी का प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे संगीत को सुनना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूंगी बाकी लोगों के लिए कि हमेशा जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। अपने आप को खुश रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए एंड ट्राई टू फॉलो योर पैशन, बिकॉज अगर आपने कहीं हिम्मत हार दी, आपका पैशन बीच में ही दम तोड़ देगा। ऑलवेज बी बोल्ड टू टेक स्टेप्स जहां पर बिना किसी का दिल दुखाए, बिना अपने मान मर्यादा और डिग्निटी को खराब किए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए और जहां तक हो सके किसी का दिल ना दुखाए। दैट्स ऑल।
0: अमेजिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही सीधा साधा और भावनात्मक मैसेज। दोस्तों, रविका जी के साथ हमने बातचीत की, उनके विचार हमने सुने, उनकी बातें हमने सुनी, उनको बहुत अच्छे तरीके से जाना और उनके बहुत खूबसूरत गीत भी हमने सुने। रविका जी, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मींस अ लॉट एंड सभी को बहुत सारा प्यार।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार के बेहद बेहद इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एक नए खूबसूरत एपिसोड में आप सभी दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं अर्पिता चौधरी जी, फार ईस्ट से, तिनसुकिया से। अर्पिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज अपना परिचय दीजिए ना, आप कौन हैं, क्या करते हैं?
1: मैं तिनसुकिया असम से हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और
1: गाना उना सीखा है कुछ कुछ, ट्राई भी किया है, पहले पब्लिक परफॉर्मेंस भी किया हुआ है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है हम लोगों का,
0: अरे वही शादी के बाद आप हस्बैंड को डांटते हो, बच्चों को डांटते हो?
1: ना ना ना, नेवर। हस्बैंड भी म्यूजिशियन ही है, ड्राम प्लेयर है।
0: ओ,
1: तो
0: अरे अमेजिंग अमेजिंग, सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल म्यूजिकल फैमिली। तो फिर तो मजा आता होगा, अच्छा संगीत में बैठक बैठक जमती होगी घर में।
1: हाँ हाँ, संगीत का महफिल बैठता है और माहौल भी म्यूजिक का ही है।
0: हाँ, तो यही तो पूछ रहा था ना मैं आपसे। देखिए, इतना तो कुछ करती हैं आप अर्पिता जी, फिर कहती हैं कुछ नहीं करते, क्या बात कर रहे हो?
1: वही शौक से कुछ तो गाती हूँ।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना अर्पिता जी एक म्यूजिक फैमिली को चलाती हैं, एक म्यूजिक फैमिली मेकर हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उन्हीं के गाए हुए इस गीत से।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा स्टार्ट और बहुत ही प्यारी गायकी। अर्पिता जी, आप जब छोटे थे तो बचपन में क्या बनना चाहते थे आप?
1: वैसे तो स्कूल टीचर इज अवर रोल मॉडल नो, तो बहुत मन में इच्छा था कि टीचर बनूं। वही
0: ओके तो कोई ना कोई तो आपके फेवरेट टीचर होंगे उस जमाने में, जिनको देखकर आपको लगा होगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए, कौन थे वो?
1: बहुत सारे स्कूल टाइम में बहुत सारे टीचर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोगों को। करते थे
0: जी। एक दो टीचर्स का नाम तो लीजिए।
1: हम लोगों का जो थे गोपाली दुनी हम लोग बोलते थे
0: जी। ओके तो दोस्तों आपने सुना, अर्पिता जी बचपन में टीचर बनना चाहती थी और बहुत सारे टीचर्स से वो इन्फ्लुएंस्ड भी थी। तो अगला जो गीत है, अगला जो सॉन्ग है अर्पिता जी का, वो हम अर्पिता जी के टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बहुत बढ़िया। अर्पिता जी, बचपन की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है, तो जब आप स्कूल में थे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था?
1: SST, सोशल स्टडीज।
0: सोशल स्टडीज, SST।
1: सोशल स्टडीज,
0: बहुत बढ़िया। तो सोशल स्टडीज में भी कोई खास चीज थी जो आपको पसंद आती थी, जिसकी वजह से सोशल स्टडीज आपका सब्जेक्ट फेवरेट हुआ?
1: बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे ना, एडिट थे तब
0: जी।
1: पढ़ने में इंटरेस्ट लगता था, बोरिंग चैप्टर नहीं था कोई।
0: ओके, तो कोई एक चैप्टर तो बताइए ना, कोई एक टॉपिक तो बताइए ना।
1: अभी याद नहीं है।
0: ओके जी,
1: प्रॉपरली याद नहीं है।
0: हाँ ठीक है, कोई बात नहीं अर्पिता जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया अर्पिता जी, आपको क्या लगता है, आपने तो दुनिया देखी है, एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव है आपको, अगले 5 सालों में दुनिया कैसी दिखाई देने वाली है, क्या अंदाजा है आपका?
1: टेक्निकली बहुत इम्प्रूव्ड हो चुका है और भी होंगे शायद,
0: जी
1: होता ही रहेगा। वही आजकल का दुनिया में मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोगों का टाइम में तो इतना नहीं था, शायद और भी आगे बढ़े।
0: ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेक्निकली अर्पिता जी का मानना है कि दुनिया और आगे बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: थैंक यू।
1: बहुत बढ़िया अर्पिता जी, अगर आपके बारे में कोई किताब लिखी जाए तो मुझे बताइए ना कि उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए?
2: म्यूजिकल जर्नी।
1: म्यूजिकल जर्नी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर अर्पिता जी के ऊपर एक किताब लिखी जाएगी तो उसका टाइटल होगा म्यूजिकल जर्नी। बहुत खूब, द टाइटल इन इटसेल्फ इज वेरी म्यूजिकल। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक म्यूजिकल सॉन्ग, म्यूजिकल गीत, बहुत ही सुरीला, सुनते हैं अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया, बड़ी ही प्यारी गायकी। अब पिताजी आपका पसंदीदा रंग क्या है, कलर कौन सा पसंद करती हैं आप, और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है, आपको क्यों पसंद है वो रंग?
1: कोई भी सोबर सॉफ्ट कलर अच्छा लगता है, लेकिन व्हाइट लाइट पिंक अच्छा लगता है।
0: क्यों?
1: लाइट शेड सोबर एंड सॉफ्ट लगते है,
0: ओके,
1: हार्श नहीं होता है।
0: हार्श नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हार्श कलर्स पसंद नहीं आते हैं अर्पिता जी को, सॉफ्ट एंड सोबर कलर अर्पिता जी को पसंद है। बहुत खूब, बड़े ही प्यारे सॉफ्ट एंड सोबर गीतों की तरह, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अर्पिता जी, इमेजिन कीजिए, फर्ज कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ बातचीत करने का मौका मिले, बैठ के कुछ कॉफी पीने का, चाय पीने का मौका मिले, तो आप किसके साथ बैठकर बातचीत करना चाहेंगी? कोई हिस्टोरिकल फिगर, हिस्ट्री में से कोई।
1: हम लोग एकदम छोटे से ही रविंद्र संगीत गाते हुए बड़े हुए हैं, बिकॉज वही तो है हम लोगों का रोल मॉडल इन एवरी बेंगोलीज, मैंने माइंड में जो है वो रविंद्रनाथ ही है।
0: बिल्कुल,
1: वही वो मिल जाते, देखने से ही
0: जी
1: मन भर जाता।
0: क्या बात है, बड़ी ही प्यारी बात कही, बहुत एप्रोप्रिएट बात कही, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी, बहुत यूनिक, और मुझे सुनकर भी बहुत बहुत अच्छा लगा कि संगीत से संबंधित एक पर्सनालिटी और रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके साथ बैठकर आप चाय पीना चाहेंगी, आप उनके साथ बातचीत करना चाहेंगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में सुन रहा था, एक बहुत ही अमेजिंग बात मेरे को पता चली उससे। अब उसकी ऑथेंटिसिटी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बता रहे थे वो खुद काफी ऑथेंटिक हैं। उन्होंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, बहुत छोटे में ही उन्होंने एजुकेशन, स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि स्कूल के टीचर्स जो पढ़ा रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा था, वो घर पे ही पढ़ते रहे, उनके फादर ने उनको अलाउ किया। उसके बाद बड़े होकर उन्होंने बंगला में एक कविता लिखी जिसका नाम था गीतांजलि, सभी को पता होगा, और लोगों ने उस पोयम को, उस कविता को पढ़कर कहा कि साहब आपको इंग्लिश में इसको लिखना चाहिए। उनको इंग्लिश नहीं आती थी और कभी वो स्कूल भी नहीं गए थे। उसके बाद 2 साल उन्होंने घर पर बैठ के इंग्लिश सीखी, इमेजिन कीजिए, और उसके बाद उसी गीतांजलि कविता को इंग्लिश में लिखा। उसको इंग्लैंड के एक पोएट ने, जो कि नोबेल प्राइज विजेता था, पढ़ा, और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की इंग्लिश में लिखी हुई गीतांजलि को प्रमोट किया, और उस कविता के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत गर्व हुआ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गीत अर्पिता जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बहुत बढ़िया। अर्पिता जी, क्या लोग आपके बारे में कभी कुछ गलतफहमी रखते हैं क्या? कुछ कभी उनको लगता हो कि कुछ गलतफहमी हो जाती हो उनको आपके बारे में, ऐसा कुछ आपको लगता है?
1: हाँ, लगता है
0: क्या
1: शायद
0: क्या
1: कभी तो वो लोग बोले नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ गलतफहमी है।
0: तो आज दूर कर लेते हैं उस गलतफहमी को, बताइए ना।
1: असल में मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ,
0: ओके
1: तो ये आदत ही मुझे मार देती है। वो लोग समझते हैं कि आई एम वेरी प्राउड,
0: ओके
1: वही बात है।
0: ओके दोस्तों, आज हम लोग इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। अर्पिता जी ऐसा घमंडी नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो अपने में रहना चाहती है, विचार करते रहना चाहती है, सोचते रहना चाहती है। इस चीज को अपने जहन से निकालिए, वो घमंडी नहीं है, वो प्राउडी नहीं है, वो एक अच्छी इंसान है। बहुत बढ़िया, चलिए इसी बात पर एक गीत हो जाए आप सभी लोगों को डेडिकेटेड।

0: बहुत सुंदर। अर्पिता जी, अगर आपको ईश्वर कहे कि चलिए आपकी मैं तीन इच्छाएं पूरी करता हूं, तो क्या तीन इच्छाएं मांगेंगी आप?
1: हम लोगों का वॉयस जो है, अपना वॉयस तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, वही बात मेरे साथ भी है, वॉयस थोड़ा स्वीट कर दे।
0: ओह क्या बात है, सो स्वीट। ओके ओके।
1: एक दो जो इच्छाएं है मन में वो 50% पूरी होने से भी चलेगा।
0: अच्छा ओके।
1: है अपना अपना तो है कुछ अरमान दिलों में, वही सब
0: नहीं।
1: और थर्ड पीसफुल्ली रहना अच्छा लगता है।
0: पीसफुली रहना अच्छा लगता है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुना क्या तीन इच्छाएं हैं। सबसे प्यारी इच्छा तो यही है कि उनकी आवाज और मीठी हो जाए और स्वीट हो जाए, बड़ी ही प्यारी बात। तो चलिए, जब तक अर्पिता जी की आवाज और स्वीट होती है और हमें और स्वीट गाने मिलते हैं, तब तक जो भी हमारे पास अर्पिता जी के स्वीट स्वीट गाने हैं, हम उन्हीं को सुनते हैं अगले गीत में।

0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा गीत। अर्पिता जी, आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी तारीफ क्या मिली है, सबसे अच्छी एप्रिसिएशन क्या मिला है?
1: मिली है, सबसे अच्छी मिली है एक छोटा सा 5 इयर्स 6 इयर्स का बच्चा, सब दीदी बोलते तो वो भी दीदी बोल दिया आंटी बोलने के बजाय, तो वही अच्छा लगा जो सोचा है इस टाइप में थिंकिंग उसका है, आंटी नहीं समझ के थोड़ा हट के सोचा है।
0: बहुत प्यारी बात, क्या बात कही आपने, देखिए ना दोस्तों कितनी प्यारी बात कही।
1: जी बच्चे का जहन में है
0: जी जी,
1: जो आंटी नहीं बोल के दीदी बोले।
0: वेरी नाइस, बहुत प्यारी बात दोस्तों, आपने सुना कितनी प्यारी बात छोटे से बच्चे ने करी। अर्पिता जी को सुनकर भी अच्छा लगा, हमें भी सुनकर अच्छा लगा कि आंटी बोलने के बजाय या कुछ और बोलने के बजाय, क्योंकि सब लोग उसको उनको दीदी बोल रहे थे तो उसने भी दीदी बोल दिया। वाओ, मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को एक्नॉलेज करना, रेस्पेक्ट करना, प्यार करना, उसको क्या कह के बुलाना से कोई मतलब नहीं है। हम देखिए ना, हम भगवान को भी तो तू कह के बुलाते हैं। कब हम बोलते हैं कि भगवान जी आप आ जाओ, भगवान जी आप खुश हो जाओ, आप कब बोलते हैं? हम तो भगवान को तू कह के बुलाते हैं कि तू ही है मेरा दाता, तू ही है मेरा रक्षक, तू बोलते हैं। हाउ क्यूट इज दैट, बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। अर्पिता जी आगे बढ़ते हुए बड़ा ही प्यारा सा गीत हम उस बच्चे को डेडिकेट करते हैं।

0: अर्पिता जी, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए क्या संदेश है आपका?
1: सुनते रहे, शांति मिलती है गानों से व म्यूजिक से, बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है।
0: जी
1: आप सिर्फ जब खुशी में हो तब भी सुनते रहिए, जब दुख में हो तब भी सुनते रहिए, गाना सुनते रहिए।
0: बहुत खूब,
1: बस मैं यही बोलना चाहती हूँ।
0: बहुत खूब। दोस्तों, बिल्कुल जहीन सा एक संदेश है अर्पिता जी का। दुख हो तभी भी गीत सुनिए, सुख हो तभी भी गीत सुनिए। यूं देखें तो अर्पिता जी संगीत को, म्यूजिक को भगवान के तुल्य मानती हैं, ईश्वर के तुल्य मानती हैं, क्योंकि हम ईश्वर को भी तो बोलते हैं ना कि सुख हो या दुख हो, हमें उसको याद करते रहना चाहिए। उसी तरीके से संगीत को भी, दुख हो या सुख हो, हमें अपने पास रखना चाहिए। बहुत खूब अर्पिता जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम
1: थैंक
0: में
1: यू टू
0: आए।
1: यू ऑल्सो।
0: मोस्ट वेलकम। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, सुनती रहेंगी, हम लोगों को गाइड करेंगी, हमारे जो नए सिंगर्स हैं उनको भी गाइड करेंगी, और इस फैमिली को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगी। थैंक यू सो मच
1: हाँ,
0: अर्पिता जी।
1: जरूर जरूर, श्योर श्योर। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।

तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम।